0: ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯚꯒꯋꯥꯟꯅ ꯐꯥꯎ ꯁꯥꯟꯇꯤꯕꯤꯅꯤ ꯃꯨꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯃꯨꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯃꯨꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯃꯨꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯃꯨꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯃꯨꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯃꯨꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯃꯨꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯃꯨꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯃꯨꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯃꯨꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯃꯨꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯃꯨꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯃꯨꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃ
1: maung maka kan na kena tau rei masi kwegi kwegi nongpok nongchup kawang haiba kaidana malem ge lebak sing seduna kwegi taina muni ri si sing na chahi lising yang kai chahi lising manga gi bamang de gi sanadana la aba india da di anu bu natra ba adu masi malem na pam na rei ba si gi kena si maram soidana le rom ge soi gi kena sim ta
0: masi kena ai wa yo ri kwegi yo ga si atei dei country de jo tai chi ga na chinese da ga tau ba moi jina physical da moi tau ba khara kai oi ga suspicious yau do dinate aro koi jina pranayam ga na ko e koi shaur ma tam da nuksa ju phi ba phi ma holi dina ada koi gi han jing e nang nuksa ju do khara tap thong ne ka hai bane ba ko
1: chaling
0: dan holu ne ga do ado mind che phadara ko hai ba ne ba ko ado na koi gi mind che u jing ma tam da yam na stress hoi ba demanding hoi ba yam na competitive world hoi ba sida yam kaino taro ko sida masi even IS ki training hoi ro IPS ki hoi ro any corporate ki de hoi ro yoga ise integrate hoi chale ba ai di mi sing je commit suicide tore namak ta ba aduna stress ka si de dil to bu de ko stress is one of the nang paisa di parak pe ai ba kaino ne paisa na phamung gi lai bi ai ba नुआ ने तुम बदली पैसा लाइव या देव नुआ ने करोड़ करोड़ नाखो के रही हाँ देवे अखन नुआ संगेबी कहीं लाप कॉम्पोनेंट नुआ नुआब मेडिटेशन अखोगी योग से जिम दौदे मेडिटेशन यौरबेदे हाईको अखोदी इसे कॉम्पोनेंट अदुना
1: लोसीलोपदे तेंतकना वफम द कोई मालेम गी योग नु मिचिगा मरी लेने ना यम तेंतक वफम तंग याम द पौजिल पिबिरम
0: हरे कृष्णा कोई पृथ्वी द कोई ना क्वाय देगे कनो याम ना फवा फिलोसोफी साइंस होइबा योग आइ जे कोई गी कंट्री रगी कोई ना कंट्रीब्यूट ओगी बनी कोई ना पिजे बनी याम ना पोंथोक चनिङाय ओइ मसी याम ना लाइना इचम चंबा कतई तई कैनो दग चलगना हेल्थ सेंटर दग चलगना आई से याम ना इना खनब इलीट नि काई खनबा सिना मकोई मरांग चोंबा फी इन्फ्लुएंस छेतबा योगा सिना तौगदम नि काईना विलेज गि नि काईना खितंग चपरा इन खले अरु हुजिक गसा हाइबी गोयना ऑल ओवर द वर्ल्ड सोम द याम ने से याम पानरे मयाम छु तौबियो अखोइ ना हौदोक चबसी लाइक सेना कहनोदी ऑल इन दयरपोर्ट लेबद कहनो तौर अमेरिकान गुमने इखल योग से थोड़ा
1: यौबीजे अखोई मालेम की योग नुमित का मांगोइना योग की मतेंगना हचांग फन थंबा हाइबसी की मतांग डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी रिम्स दा प्रोफेसर हेड होने थोपुबिरंबा हजिकना पतंजलि योग नोंगिन की फाउंडर प्रेसिडेंट ओबिरीबा डॉक्टर सिनाम राजेंद्र लेंबीरक्तन वफम के अताकपीबा डॉक्टर बुथागचरी
2: ताबिरे हेलो मणिपुर हेल्थ लाइफ फोन इन प्रोग्राम दा योग की मतेंगना हकचांग फन थंबा एक्सपर्ट ओइना लिंगसिन बिखिबा डॉक्टर सिनाम राजेंद्र फाउंडर प्रेसिडेंट पतंजलि योगा नोंगिन फॉर्मर एचओडी यूरोलॉजी रिम्स थौरम लानथोक पिखिबा हैक्रुजम देवेंद्र मसी तहन जखिबा गलोइनना खोंजेलना चोम संदोकचबा मतांगासिदा लोशिनजरी

0: हेमा बटी आई की चिंता का कुमुनो आई ने याद रबड़ी याद रहे बिचने
1: फिर अब तो दी लवी तब ने है न पाय आई ने आई की इपुरो इबा बुदी लाई की थाक तो इकाई कुमने जरी बने सही तरह मरी तरह मंगा लाई मीना रख पसीदा मुई बाने याद अब था बक अमता आई ना सिपाओ बताओ किधर
0: तो फायरिंग इसी दिन अंगी जोश है फायरिंग नहीं पास है गेट में यहाँ से कार खाने में
1: मुई बा निपाने वो मधुम रंग कंगन साव बहुने दिस महतंग इन्हें पता भी उसे आई गेट से शोंग तांग के
0: हेमा बटी नंग गेट हांग शुंग आया रोए नंग ना शो हांग बहाय बसे आई फायरिंग साव ये ना बटी
1: फायरिंग वैसी बो आई उन्हें सिंगरी बरो
0: सिंगर बा नंग आई की राय की मायो के लेप लग दे आई ना नंगो आई ना नंगो कात्र हट करे
1: मुई बागी वाकन से परम नसेरा ने रूडी बा मुई बागी मायो के दे आई शुले पम थोक दे आई
0: यूं सिगी माओ अरुडी हायो जोसेफ का नानो
1: महाग आई की पम दे अतिथि ने
0: अस
1: मुई बाना इंगों द कुपाग न थाबीरी बसुगो
0: नंग आई की रूपी ने
1: आई नते हाय की दे
0: जोसेफ का नंगा कार टोंगना अशिक पमहं कयादा कोई मिसले नत्रा आयाम बमतम दा सिंग पाट तुरे अटू दिखी सुहें रोक तुना हराओ कुमई भावा येंग में नहीं नत्रा कुमो नसिम दिनों कुमो
1: होई वापम जो असुम्बने
0: कई नसुम्बने
1: नाइको नाइको कुपा तो थाबी रकन आई न तसीन में इराल लेरम लगती आई बुकाब तुन हाथ कनी हाइब वापम दो आई इसाने यार मुपी हाय दस तुमिन लयो लेंगनो हायरगा या बजी बा मोइन सु उबी कनो नराल इरान थिबी बगी महुत्ता आइन पाम जबदी नंग आइगे नुसिना बसि
0: नुसिना बसि ने हेमा नंग नराय दुख हाय गप नंग दुख कल्लवा मसे आइ युम ने हेमा
1: मोइ बादे युम बाले रबनी ना मसे आइगे सु युम ने आइन इनिंग तवदी असुम्बा मबु पुरक न बहोत न बने
0: करी असुम्बा
1: मोइ बाना कुंदा लैग लोइन दुन त लैखिब मि कुक तया दा आइ नो मत अथिं ब पीखि आइ न ngasi जो से कि द बग गेट हांग बदा मोइ बाना सुथिं फम सों टोक टोक
0: हेबते
1: कुंबियो कुंदा लैग सिबु मोइ बागी कनानो
0: कुंदा
1: लैग कनानो हाइ ग आइ दिखंग अदुगा आइ कुंदा लैग नते छोम तहांग लुखिगे अदुगा मु वारिसास
0: करी करी हाय बा कुंडाले आइगे कना वाकन से नसी तमा की मचे लगे ओइनि मोश आइ नि पाने नुपी महा अशो आइ बुसिनडी पे खंगनि दरा करी आइ न थिंग न थिंग न महा न गेट शो हामे जोसेफ हरों कुछ चुकने कहीं और किसने सांन तब कर चुकी है जोसेफ की हाँ मम्मी ले गए हम बच्ची मम्मी टेकी मम्मी शंटरी मम्मी ते चुके मकड़ाई रहाई रहना जोसेफ को लूसी न बिदाई पी संक्रमकार से जब पाओगे
1: ฮอซิฟอวีเอลีฮอซิฟอวีเอลีเฮลาบะตีฮะมาบะตีนาไอกินุปินะเตนาไอกินุปินะเตนาไอกินุปินะเตฮักกรีไอนมาบะฮักกรีไอนมาบะฮักกรีไอกิมามัตตะนังนลอรีบะฟิเรมอยบาไตนอยามชาวนะดะลามะทะไตซินเทละอุเซเฮมาบะตีมอยบาซอรมะนิไฮกะไอคัน ควาริเซไอมัตลิเซกะควาริเอไอคัมเปนิกิทับตอกิบะไลกิตอกซินนาบะคอนเซปต์โซเซปต์ญี่ปุ่นมาซาอาเซียงบะมินงาอิดเวนซุงมหาไอกะมาดราสดะอินจิเนียริงตะมินาคิบะซาตระงาซิดีอิดเวนซุงมณีปุทธะดอกตะเนเซมารุมะฮาเซเกนวานวาระไลคิดระบะมะปุโกอะมะกิตารปอนกัตปะละลัมบะ
0: करी आई बा मोई बाना कुंदा लेगा लुइना तुना तलाई खरबा मतम दा आई था मोई द करी फौरंग गनी करी फौरंग गनी मोई बाना हलक खिदा बा अहिं कयाद आई बु करम न लेलंग गदगे

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
3: 1 दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल। पिछले 12 सालों में 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का

0: का भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, ये विलेज ड्रिवन विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

आकाशवाणी इम्फाल हौजेयू की पुंग तरामाथोय मिनिट यांखै तरे चले नेहा की मतुंगदा कांगला चैनल की अनिसुब थौरम मीडियम वेब मीटर 0.5 दशमिक अमा किलोहर्ट्ज 95.2 दा तोंगा नता बफंग बिरगनी।

0: हेलो हेलो
1: हेलो, गुड आफ्टरनून
0: हेलो,
1: मैम।
0: गुड आफ्टरनून। कनाओ बीरा बनो।
1: इनाम आवाज़ कहीं जैसी कुछ जोड़ा होगी अनीता ने मैम।
0: होय होय ओय नाम दगी को
1: आओ मैम।
0: होय अनीता कमदौ बीरी हौजिकी मतम सिबो दम नुंगाई बीरी बनत्रो।
1: ये दाम नुआई भी है जो माले हो गई थी कनो की तुम गरा जी पाई तो जब नहीं मेरा पाप दाम का संग दी नुआई नहीं जाना
0: होय होय
1: अदा ये जाएंगा सी जे सम वाह बता ये सम वाह कमों भाई तारी ऐसे आ रही फोन कर संदी तो खली बन दाम कनो की फोन इलेक्शन की ऐसे आ फोन तो
0: होय होय होय
1: कल मैं खत्म तो कोई डॉक्यूमेंट लाऊंगा बाकी जिके ऐसे आ रही तो कोई मामा मामा पाव जा हल्ला मल्ला की तो बिशम मामा पाव शुभ याद नहीं ना आता तो की वाव जाए ना वाव जो मैं पता हुए ना मेरा अंगा
0: सो कॉल से तो होगा
1: बड़ी मस्ती है तो साला ये ना तो रोको ने मेरा
0: होय होय अहान ब कॉल ओइ ना सुफंग लग वडी से साना ब फंग ये को कॉल अमा पैखा सरम बने दु मगपु अकोई की लाइन से दुंगाई तब नर कन वडी सा ब फंग हौदे अनीता गे अहान ब कॉल ओइ ना सा ब फंग जरेंग सिसे असि
1: जाम नुंगाई जा महागा ओइ मेदा मसी अहान ब जो फंग गुजी
0: होय होय यामना लाइबक फब हाइबे दनी मखा तारक पा थौजिक पुंग कोई की तरा नि थोई मिनी तरा खरे हेन चत पद ngai ri bani ba makha tarak pa sing si su nga si nong ma se loi na mang lai bu phob nu mit oi ni hai na khal la kan da wa ri se sa do pa ta re ne do di ko
1: pa ni ma dai se ni ma ai ni kai no ta sam a ai di bu kha tar ro ye ba ko ma ma gi loi na ma wa ba gi ngai ba gi loi na thuk si ya ja ri na hai ja ge mi da
0: hoi
1: a du du ga ai ni kai no ta ngi da da hai ja ge ta ba
0: ya ya ya hai bi
1: a तुम नो ना तो वहाँ कहीं नहीं चाहिए तो वो निकला वो था फन वो क्या अरे अब ये तब ये कुछ दिखो पको में तो मुझे तो ना था आ तो जो आ ये ना मचाना है को लोग का मम्मी जाएंगे ना मैं तब ये जो दिखो पको मामा होने मम्मी को ले ये कोई जो आ कमाई ना थोड़ी की ना हंगे ये में अरे जो मैं पीछे ना हाई ये हाई
0: ก็ยิจิโปปะกะตวนเดคอยยิจิชิงะกะโทลิไฮยะดิเมกะมายนะโทลิโนไฮดิเมยันซาคัลละเกฮิโรเมโหยยามโนวาคัลโลซิงเซทาดะบิระกะวาฮังฮังโวไอเนลาวโทซะเคเบวาฮังเซกตะฮังซินบิเรบะมาซิกะรัมโคปะกิตังคันนินนะยินตะวะนิซุวาบันดะไลเลยโหยอะดุซันตังเคละไลนะดะดะโกเมพะลาวนะกะฮังซะลัปปะซิดะเฮอะนิตานะคังปัมบิริบะปาวคุมดะเฮโอยดะกะเดคอยซุเฮอิไกซะริบะกวาอะเรดะปาวคุมดะชิมปิจะระมะเกบะ
1: ยินยินบิดนะคุมเอวะมาซาดะเอ่อคุยดิชิระทอลีไฮคมายทอลีโนนะมาซาดะนะฮันเยอืมอะดุกะติกันโตติกันมอมอติกันไฟดาซะดะมายนะคุยดิชิระกันทอลีนะมาบิดนะมาซาดะคุมเมยินนะมาดุกิงานงเชนทอลีโหยโหยยามนุงไงมารักตะซูเฮกไอคุยนุปีโอยบิซิงตะกิทำจาริบะทอรัมซิดะอนิตานะกะสมัยนะกะสิอะฮันมะโกลอยนะกะตอระกะผากีปูบะมายามนะสุตามินะบะดะเฮกนุงไงกะตะบะกวา अवाब मैम से कौथो नुंगाई बारी मत लिबीर से
0: पाखोंगनाइजरमगेमगेगा
1: ไปเดี๋ยวเดี๋ยวมาไปยิงยิงมีงานอะไรก็ที่ได้ไปไปที่บิโรสวยดันนะทิ้งได้ไปกี่ตันจ้าสโลมินาดิอ่ะดูอันนี้ตามมาทั้งเด็ดดีหอยโกลโตบิโรคุณมาตั้มดาไอ้ห้างนั้นสุปาวคงมาจันจันนะว่าสวยดันเสียมสารก็เลยรำลึกกี่กว่าฮัลโหลมูเนมาสุปาวคงบีบังอัมบรันตุยินเดียวหอยหอยหอยยามดงไงเซ่ดูที่มาทั้งกี่กว่าแล้วมึงไงมินาสิกว่าไปเรียนเทนคิวเทนคิวเทนคิว
0: Hello. Hello.
2: Hello, madam.
0: Hello, good afternoon.
2: Hello.
0: Hoi. Can I be doing no?
2: Hoi. Shomung. Yatay nga bang nga bini, madam.
0: Hoi, hoi. Shomung dagi nga bi. Radio sesu kita ang nag na lay ba malik o kita ang laptop aga di hegwari sabi nungay ga drag hanzay kita ang laptop piyo kwa.
2: Kita ang laptop siya rin, madam.
0: Hoi, hoi. Kari wafam tambi sige.
2: ꯁꯨꯛꯇꯨꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦꯗ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯃꯦꯗꯥꯝꯒ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯗꯕ ꯀꯨꯏꯔꯦꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯨꯔꯤꯕꯀꯣ ꯃꯦꯗꯥꯝ
0: ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯗꯕ ꯀꯨꯏꯔꯦꯒ ꯍꯥ

0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून मैडम।
0: होय कना ओय बिदोय नो
1: छगा मखाले खायदगी संध्यारानी तोबे
0: संध्यारानी संध्यारानी थरम द तराम नोकचरी करम बफम थमिसिके
1: मैडम जी चाक चाक बिर बो
0: चाक चाक रग लाय आयो के लाग पकान दा
1: तारि जान हाव बिर के
0: गसि से हवाय म तोरे खय गिसे दुगा कंगमे
1: दमगा
0: छोम दिसा बिर ब्रो
1: आउ होय चाजरे
0: गारी मा टेलीफोन ना बिर बंगा सिदे
1: हवाई मना गा बोली गे थोंगे
0: ना कंद का अम त यो बिद्र ब्रा बा
1: थांजिंग सु जु याव
0: हो थांजिंग से दि हाउस कि मतम दि आम हाउ बा कनो मने को आम थेल मने हाय बता रे मेट बत सु दुम हाउ रे कै गुम बत इरोन बत ग हेक था सु अदुम हाउ बा क्वा अदु संध्यारानी अतोप करी वफम थंबिगनी गसे गुड आफ्टरनून दे दिस द कॉल तोरक पसे आमन मचंग ओइ वफम मन दे थंबिरकनी हाय बति खंजाई को ओय करी थंबिगनी
1: थंबिगे ने दाम सम तौर मिना ने दाम ओइ खंजेन तारगन सम नंगाय जे बोय ने सम तौ जेर बोय आनी दा कसे थु दो पयाम हानि गाय दे जे दिन सा थाबे सम नंग सा काम बुदि दा
0: होय होय मरक ते दिकना गो बखरा नदी कॉल तोर ग हाइनिंग ब वा मया मम लेर ग हाइब फंगदि काइन हाइब सु हे मखोइन ग तारग दि हेक नंगाय रोइ दबा को
1: आईडी दुकान त वेब को अदर न पो यो मनी न गाले न अम्मा मु लाई गाले न मे खुदि छ मन लाई
0: होय होय होय
1: त मोहन द वारी छाव मत नि थम थम जे भाई तारे
0: होय होय अदु मग पु वारी सा बगी मतम के आ लेटर ग सु थोरंग ग फजन ताबी रगा एकोई दुकान ग फम बदा दुम ताबी से मसि मदियम नुंगाई जाय को होय होय अदु दि संध्यारानी याम नुंगाई जाय कॉल तो बिरक प मथं कॉल अम मुगाई मिनसि को हेलो हेलो
2: हेलो
0: हेलो गुड आफ्टरनून
2: हेलो
0: हेलो तबी रे को आ
2: ताजा रे ने
0: होय कना ओय बिदोय नो अरोय ब कलर सु ओय रे मिंग लाइफ हम हाई बियो
2: मे बाय ने सिगे पर मरी मंगा रख तो बने को दुबा चुंबा ताई कलर तो इसे ये मुठा मुमी नंग फंग
0: अदुमक पो अरोई ब कलर ओइन वारी साब फंगि सिमा दियाम नुंगाई रे करी वाफम थंबिनि तें तक न थंबियो हे अरोई ब कलर ओइरा बनिना क्वा
2: ओ आइजे सुम सुम ओट पदे द फंग तो करेंग असि रे दियाम नुंगाई बे
0: होय होय मिंग मिंग दु हाई द्रि मिंग अंग तंग हाई बियो
2: आ ले मम मनिंग ने काई दिनि
0: निंग थौजम देनी हैबिबा
2: आ
0: होय निंग थौजम देनी हैबिबनि को
2: आ
0: होय होय वारी से साबस द हथु अथु तो बस दैसे अरोई ब कॉलर ने न खंदो रे अरोई ब कॉलर दि ओइ रोई धनि बजन दम तप न साना रसे को करी वाफम थंबि गनिंग असे गुड आफ्टरनून लेडीज द फोन तो बिरप मैम
2: जाम दे आनिंग ने दो आई टेंटन न वाम तंग हाइजर अगे
0: यानी यानी हैबि
2: नंबोन गे इरांग गे रोले कांद सकाना कोई बिजम क तंग छाबी कोन गे बिस म जान क तंग छाबी दि आ नुंगाई ने न सिदंग हाय जे गे मे अते दि कोन हाय रे
0: होय होय अदो दिनी ए कोई से नुपी ओइ बिगी अखन न थम थम जब थोरम सिदा नुपी ओइ बि सिंगी थौदांग गी मतांग न त्रगना इमुंग म द बोय रसु करी करी थौदांग ले बिगे क हाय बदो अदगी दिनी न लोबी बोय रसु याई को अदुगुम्बगि मतांग दसु तेंतंग ना मतांग दि थंबिर मुदना
2: तकोइ इमु मनुंग दि इमु मनुंग गे आ जे मेम आइ दि पंग दु नुंगा द सिदि कछो मा हाइ निंगा ले दे को न मतांग थंग हाइ रा गेल मतांग दु तेंग जल आ
0: मने ओ नुंगा रे गद लै रे बा
2: आ
0: होय होय होय अदु दि मतांग गे कॉल नाइजरम गे मतांग गे खोइ गे प्रोग्राम अमन द बुवारी साना से को
2: आ

0: 이사야 씨 다한 적해 보가 러이나나 나시기 오이나디 good afternoon ladies 기 토럼 마당아 시 달로 신지리 나시기 트랜스미션 아시부 부비리바 인지니어 싱디 라이슈럼 로시다 아마디 샤라찬드라 트랜스미션 아시부 부비리바 스타프 모니카 아동기 텔레폰 옥적히비 건징범 닐말라 제누나 토럼 다비름리바 아마디 토럼 아시부 마풍 반비르키바 뿜나막보 아무까 하나 타갓바 퐁독저리 토럼 선독나 다한자리 바시 아가스반 임팔기 FM 상하이 채널더기니
1: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर
1: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए सुदर्शन सेतु चिनाब रेल ब्रिज बोगीबील पुल अटल टनल देखिए पंबन समुद्री पुल देखिए ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है

0: कल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
0: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आकाशवाणी इम्फाल हौजिक मथंग थौरम गेट मला की दमक अदोंगी एंकर खुराइजम बेबी रोशनी दा खुशी नजरी।

नमस्कार श्रोताओं, मैं खुराईजम बेबी रोशनी आप सभी श्रोताओं का गीतमाला कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं। और आप सुन पा रहे हैं 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित FM संगाई चैनल से।

श्रोताओं आज शुक्रवार है और पहले की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। तो सुनते हैं ये पहला गीत A.R. रहमान के संगीत निर्देशन में। आइए सुनते हैं रंग दे बसंती फिल्म से एक गीत। आवाज दिया है लता मंगेशकर और A.R. रहमान ने।

श्रोताओं, तीसरा गाना आप सब लोग के लिए प्रस्तुत है प्यार फिल्म से। आवाज दिया है के एस चित्रा और एस वी बाला सुब्रमण्यम ने। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीत से सजाया है आनंद मिलिंद ने।

श्रोताओं, आपने अभी ट्यून किया है आकाशवाणी इम्फाल केंद्र के FM संगाई चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत, और मैं आपकी रेडियो सखी खुराइजम बेबी रोशनी।

अभी आप सुन रहे थे रुडाली फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में एक गीत, बोल गुलजार के हैं और सुरों से पिरोया है भूपेन हजारिका ने। आइए अब सुनते हैं साधना सरगम और उदित नारायण के युगल स्वरों में एक गीत, फिल्म का नाम है क्यों हो गया ना। शब्द रचना जावेद अख्तर के हैं और संगीत से सजाया है शंकर एहसान लॉय ने।

श्रोताओं, आपको कैसा लगा हमारा आज का यह कार्यक्रम? मन तो नहीं करता आप सबसे विदा लेने का, लेकिन घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही है। लेकिन बाद में 2:30 बजे आपसे फिर मिलेंगे फौजी भाइयों के दैनिक कार्यक्रम में। मैं आज आप सब लोगों के लिए कार्यक्रम फिल्म संगीत प्रस्तुत करूंगी, वो भी कंगला चैनल में। मेरा इंतजार कीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

थोरम सदोगना ताहन जरीबासी आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल देगनी हाउसिंग पुंफा मस्सिदा थोरम ताबिरम लिबा पुमना मकेदा मक बुद्धना लाग्जरी मणिपुरी फिल्म साइसिंग मथंग मथंग होइना

0: 嗨，老魏，该到这，何必何必哪个能来面啊？我们开里头吧。
1: 嗯，阿杜不热，来宁河那里啊，富罗吉马兰的伊巴来里呢。
0: 我不是的，哦，是的来里呢，是是。
1: 是的，邦拉梅英那伊巴阿达，梅泰梅英那伊巴苏阿姆特要的是的呀。阿杜克拉多，那里啊，富罗吉本西瓦里要了的，阿姆特巴比奥吧。
0: 该到那不弄。नन फुलोगी वारी दु याम तानिंगे सिबो
1: एको स्कूल दा नाविया फुलोगी मरम दा वारिंग इब कंपटीशन तो दुरीए एको हाउस क्यू एना अयाव बता हरीबा अदुगी ने हाय बखरा तोन सेबा
0: अदुगी वेरे मुन ताव को
1: आ
0: नाविया फुलो हरीब नुपा दो क्रिस्ट कुमली सिंह मग चानी पान मरी फुनी पान गी अगस्त की तांग कुनी पान अदुगा थवान थागिना कुनगनी थोइनी पान बा लेपा पोक पनुमित तपोकी महा की पोगना फमना कसार जिला की जारीवोन लाइश्रम खुल मयाई लेकाई है दुदनी को अपो को मपावोंगी मिंगना नावरेम चाओबा अदुगा ममाई भी मगी मिंगना थंबव कोई महाग से ममा मपा अनी की मचा तारा की मनुंदा निपान सुबने मपावोंग चाओब से सही तरेट खुंताक गई दा मणिपुर की थामई बन है बल लेकाई दुदगी लांजेन नखीबा हेरांदो कोबा अमगी मचानी अवाला नमरम ओइदुना पोना फमलम दम थादोक लम लगा चेलखि बदो हेरांदो गी थमोय याम सोखि
1: अदुदि खुरा तो नावरेम हेरांदो हाइसे नावरिया फुलो गी दि मपुबो हाइदि पुपु ओइ तारे
0: कोइनि मपुबो निने नसाइगी मरै बागता हनब फंग्रबा मपुना मसु सिंगदा मणिपुर गी लमित तुमित लाइफम तिनफम लाइनिंग लाइशोल न सिंगबगी मरमदा नुमिदांग तुमम दाय दने हेक हेक वारी ओइना लीदन ताहली मशुसिंगी मनुंगदा फुलोदी खरहेना पुकनिंग संगन ताकी मधुमक्तना मांगोंदा ममालय पाक मणिपुर बुनुंगसीबकी इहुल अम फौरखि बजानी
1: अदुआ खरा तो फुलोगी तो पममिंग फुंद्रई हाइब्र कैनो अमसुलै हाइना
0: ले अंगांग ओइरिङै फुलोसे सवोंग सबान फजन हौरकजान अदुदा मपुबोंना मसुबु फुंद्रैने खेतुने साबगुम फजगरे हैदना फुंद्रै थोनबि जानिदा मोजासिंगनासु महागना स्कूल कारकप मतांग दुदा थोरली नवी हैदना ने फुल हाइना मिन थोनकी को फुल हाइदि हिंदी वाहिनी लई हाइबनि को मतम दुगी मैतै सिंगना फुल हाइबदो फुलो हाइना कौबिखिबा सुमना मागी ममिंग से फुलो हाइना खंगना रखिबा जानि
1: अदुदि खुरा तो मादि अंगांग याम न ओइरिङै देगि लाइक तम अबजानि ने
0: फुलो न लाइक तम बहुरक पसे राजेशोरपुर कुंत्रा मरी हाइबा लेकाइ दु द लिंगबा एलपी स्कूल अमदगि निको अदुदगि मथंग मथंग लाला आगी यूपी स्कूल को अदगि नरसिंहपुर गी मध्य बंगा स्कूल अदुदगि दि हैलाकांदी विक्टोरिया मेमोरियल गवर्नमेंट हाई स्कूल दगि ख्रिस्ट कुमली सिंह मग चनीपान तरा मरी दा एंट्रेंस पास तो की सिंथा भैया बा अमन ने ना उबिया मतम दुदा मफम दुगी मैते ही मचा सिंह की मनुंग दा आहान बा एंट्रेंस पास तो बम महिरो इसे महक न उई की लाइबक थी बदी मान महि तमलिंगे मनुंग दा मपाबुंग नोंगा की मपाबुंग लाइक इधर बम तुम सही ओ लब दने अमाई बी मन्ना फुलो बु मोइरिंग जाम बा अपाई की मचानुपी अतोन बी शानारेगा हाइना सिंह न दुना लुगों की की असुमना फुलोना मचानुपा मरी अदुगा मचानुपी अनी फंगजखी को
1: खुरातो नाउरिया फुलोसे सेल थुक पथब इनखांगादि कई कई तोरम जानो
0: आइना लाइरि खरादगि थेंगनारक पददि महाक्सी आहान बो ओइना हाइला कांदी विक्टोरिया मेमोरियल गमेल हाई स्कूल दा ओजा ओइना थबक संखि अदगि नुंगाइरि बदिने नाउबिया फुलोनम सिनफम अदुदा चंगबगा निंगथौ हरिचंद्र राम बनवास तगी हलकपा हाइबन सिंगब लाइरिक इब हौकी अदुदगी महाकना ओजागे सिनफम थादोक लमलगा सिलचर गी डीसी ऑफिस ता ऑफिस असिस्टेंट ओइना मतम खर थबक तोरमी सुहाई
1: अदुदी मादि लाइरिक फाबनिना थबक से अमदसु अमदसु अदुम फंग ओइ तारे ने
0: होय अदुम ना हाइसु या जानि ख्रिस्ट कुम लिसिंग मग चमापन तारा निपानदा आसाम पुलिस सर्विस द अमुक संगे सब इंस्पेक्टर ओइना को अदुदगी दि महाकना आसाम गी मफम कया द पोस्टिंग चटकी खरदंग हाइगेसे दिब्रुगोर बोकाघाट नलवारी गौहाटी जोरहाट शिवसागर रंगिया अमिनगांव हपलोंग न सिंगबा मफम सिंग असिनी को asumna mahakna chahi taret lom thabak tauki police officer amo aina matam khara mahakna government ki thabak tauringai da noma magi mamana basingna asumna haiki hai
2: karino da phlo babo nakhoi meite singa sine taul sibo asau phurumni nari pagleri naru le jeri e wari boi ba lai shon tin shon gi sei noma het pangphok pade di bangali sanskrit lon de te sok tholei e masibu karigino nakhoi gi naru nda sak chhon ba kari kai gi ba ira kholo pade su bangla mai ekta ngai ek le jete ba jala hai ba
1: as khura to phulo do yam nei kairam ni go
0: mamanna ba singi wahai duna mai subagum ne thokre patung dagi di mahagna maitai gi ipanat ipunat ki maram da thigat ke lon chaukhatna na ba hotna ge hai ba ahak pa phirep se lauki adubu madudagi he na ngak pa thoduk ama su phulo na police officer oina posting taringai manung da thoki thoduk tuna ne phulo gi pukning da maitai kanna na ba gi wakhal paring tha ba hoki hai ne noma atheng ba hing ni krista kumli singa ma ga chama pan kun taruki september amadani matamdo phulo rangia thana da ac oina leiri tangai phadaba inquiry ama chatlu badagi shukla ba chingnung ama phau duna halak padane phingang setpa hal ama thengna ki hal duna sing

अहम सुबह ओना खनबीरकलीबा मरुपसिदी राबई एयरपोर्ट तगिनी हाइन हाइबिरई अदुगा रेडियो तारिबा मरुपसिंगा इसाई असी पुन्ना तामिना जरगे हाइना मरुप असिना खनबीरकपनी अहम सुबह ओना विद्यारानी सरांगथेम अमदी प्रदीप नोंथोंबम अनिगी अपुनबा खोंजेलदा प्रदीप नोंथोंबम मसामकना सैरांगबा अमसुंग सैरेंगबा इसाई रेन नुसीमागा उननिंगबा मागी खोंजेल तानिंगबदा महौसागी नोंजु नुंसा अकनब नोंग लैना करमना थत्तुना थंब गमगनी साबी सानवनीगी चेंथरकली बनुसी इचेल अदुददी इथिंग खुदिंगमक अरेमबनी इंगा था ओशिलकपसिदा नोंजु सुचुरकदौरे रेन इसैयासी ताजगे हाइना मरु असिना खनबिरकपनी हौजिक्लौबिरसी बिद्यारानी सरांगथेम अमदी प्रदीप नोंथोंबम अनिगी अपुनब खोंजेलदा रेन।

0: ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯐ ꯑꯦꯝ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯔꯣꯖꯒꯥꯔ ꯃꯦꯂꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯇꯔꯥꯅꯤꯄꯥꯟꯒꯤ ꯔꯣꯖꯒꯥꯔ ꯃꯦꯂꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏ
1: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको नई दिल्ली के विज्ञान भवन लिए चलते हैं, जहां से आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं प्रीति मोहन और डी एंड्रियो। आइए विज्ञान भवन चले।
2: नमस्कार। विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल से मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरे साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू मेरे साथ हैं और आकाशवाणी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज विज्ञान भवन में भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन देश के युवाओं को सशक्त बनाने, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। यहां हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहेंगे कि विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और वो लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
3: Yeah, the Prime Minister has arrived already, is in Vigyan Bhavan and is in a separate hall where he's having a talk, a discussion with the beneficiaries who are going to be benefited today from this this Yojana, that is the Vikshit Bharat Rozgar Yojana by the Prime Minister. And then after that, he'll be coming over here and say in a short while he'll be entering the plenary hall wherein the program will begin. And to say, tell you something about the atmosphere over here, it's really brightly lit atmosphere, and a lot of flowers are there in front of the dais, and you're having yellow, white and pink roses, and of course they're flanked by yellow and pink lilies and the anthurium. So you can see that all the people, the beneficiaries, they're numbering about about 600 people who are all seated over here, and they'll be getting the appointment letter for the jobs, and it's going to be a wonderful atmosphere over here, and it will be a lifetime experience for them because they're getting these letters from the hand of the Prime Minister.
2: बिल्कुल एंड्रयू, और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे डिजिटली, रिमोट का बटन प्रेस करके, और सबके खातों में चली जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना।
3: एंड वी गॉट अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रीति व्हेन वी गॉट अ जॉब, नाउ यू सी एवरीथिंग इज डिजिटल, सो इंडिया इज आल्सो गॉन अहेड विद द वर्ल्ड बिकॉज एवरीथिंग इज डिजिटाइज्ड नाउ। एंड टुडे इनफैक्ट अराउंड 15 lakh beneficiaries will be getting their job, their letters today, employment letters, and that is going to cost about 2,400 crores only for today. And then, of course, and the final aim, the final total, that is going to be about 3.5 plus crore jobs, and the total budget is for this is about 99,446 crores.
2: बिल्कुल। और मंच की बात करें तो मंच पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होंगे श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, और साथ में होंगी श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, और साथ उनको जो स्कॉट करके लाएंगे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी, और साथ में दो युवा लाभार्थी भी साथ में होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब वो मंच पर आएंगे।
3: या दिस टू बेनिफिशियरीज आर गोइंग टू ब्रिंग द प्राइम मिनिस्टर टू द डेस्क, व्हाट अ प्रिविलेज फॉर देम। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर देम, एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू द मोटो फॉर दिस इज रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार। What an encouragement to the people who are going to start the business. And then the transformation journey is from auto settlement of advance claims up to rupees 5 lakhs. So people who have got debts and all, that will be waived off. Then centralized pension payment scheme, which is CPPS. and then digital life certificate through Umang app and face authentication technology FAT through forgetting the number, and 99.68% of UANs have been generated, which is a universal account number.
2: आज के कार्यक्रम पर अगर एक नजर डालें तो फिलहाल युवा लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत हो रही है और उसके बाद डायस पर आने के बाद हम ये जो विधिवत एक स्वागत होता है वो श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया द्वारा किया जाएगा तत्पश्चात एक लघु फिल्म प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर दिखाई जाएगी और उसके बाद जो आज का बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम है रिमोट का बटन प्रेस करके राशि हस्तांतरित की जाएगी लाभार्थियों के खाते में और हां बोलो
3: या यू जस्ट कंटिन्यू
2: इस योजना की अगर प्रमुख आंकड़ों की बात करें उस पर एक नजर डालें तो योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई और अब तक देश भर में 15 लाख नए रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं पहले ही हो चुके और योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है और आगामी दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का लक्ष्य है तो देखिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी कितने युवा उससे लाभान्वित हों और शुरुआत से अब तक का सफर देखें तो करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है और योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना और आज के विशेष दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे ये एक एनकरेजमेंट होता है और कुछ बेहतर करने की एक जो ललक होती है वो
3: आती है पीपल विल फील सिक्योर ओके द गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प अस आउट सो वी शुड नॉट फील दैट ओके आई एम नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग बट Let the, this our Prime Minister is given them an assurance that the government is there with you. That is what he says in this motto, no? Rozgar ya karobar. साथ है भारत सरकार
2: जी और चंद मुख्य बातों पर नजर डालें तो यहां जरूर बताना चाहेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आज विकसित भारत योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे और पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा और सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रति माह 3000 रुपए तक के प्रोत्साहन के पात्र होंगे और इसके अलावा ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सृजन रोजगार के औपचारीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है आसानी से सब पहुंच सके और इस प्रोत्साहन ने देश भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सुलभ करवा दिया है जी
3: या एंड यू नो दिस प्रोग्राम ऑपरेट्स अंडर ड्यूअल इंसेंटिव स्ट्रक्चर स्प्लिट इनटू टू डिस्टिंक्टिव पार्ट्स The first part is support for the first-time employees. Jinko pehli bar naukri mili.
2: Pehli bar.
3: This component focuses directly on the young individuals entering the formal workforce for the first time. And the eligibility is new employees joining an EPFO, that is the Employees Provident Fund Organization, registered establishment, with a monthly gross salary of up to rupees 1 lakh. And the worker must not have any prior EPFO history before August 1st, 2025. So these are the conditions. And then the financial benefit is a direct incentive equivalent to 1 month of EPF wage capped to a maximum of rupees 15,000.
2: Mm-hmm.
3: Right?
2: Mm-hmm.
3: And then the disbursement will be in two stages. That is through the direct benefit transfer DBT through the Aadhaar verification in two equal installments using Aadhaar verification. First installment after 6 months of continuous duty of 7,500 rupees. And the second one after another 6 months. So after the completion of 12 months, they'll be getting a total of 15,000 rupees. And the employer also, of course, he also gains something. Every time he brings in a new worker, he also gets a benefit of 3,000 rupees per worker that he brings in. So obviously, when these benefits are there, even the employers, they'll try to bring in as many people as possible, and even the so that more and more people get employment, and they also the employer also earns, the employees also earn.
2: बिल्कुल सभी को फायदा है बिल्कुल फायदा है और आर्थिक विकास में विनिर्माण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र में नियोक्ताओं को चार वर्ष तक प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा और वही सभी क्षेत्रों के नियोक्ता दो वर्षों तक इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है
3: See, and then one more thing. See, the Minister of Employment and Labour organizes and promotes Rozgar Melas, that is job fairs, which is being held today across India through the National Career Service portal. That is the National Career Service India to bridge the gap between the job seekers and the employers. And the National Career Service, NCS, is the official platform where you can search for local job fairs. It is, you go to the portal and you'll get, and then register as a job seeker and connect with the employers. So if they find that you are reasonable, you are well qualified for their jobs, you'll be picked up.
2: और जैसे कि एंड्रयू ने जिक्र ही किया था आज का कैप्शन है रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना और कुछ एक पलों में लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा बिल्कुल डिजिटली पहुंच जाएगा कहते हैं ना कि अच्छा आएगा देखेंगे ऐसा कुछ नहीं है बस रिमोट का बटन प्रेस करेंगे और सभी के खातों में मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि हाँ आपके पास पहुंच गए हैं तो ये बहुत भावुक क्षण भी होते हैं नहीं आपको टच भी करते हैं दिल में कहीं और प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है कुछ करने का कुछ बेहतर करने का इसके अलावा नारी शक्ति पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी चार श्रम संहिताएं लागू महिला कर्मचारियों के लिए लाभ नारी शक्ति समान कार्य के लिए समान वेतन सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान और भूमिगत खनन एवं भारी मशीनरी सहित सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार की अनुमति विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है ऐसा कह सकते हैं ना
3: that's true and that's what we say you know dreams are being fulfilled under the prime ministership of Mr. Narendra Modi and in fact this applicable period for this one the one which is taking place right now is from the

0: पा रही हूँ कि विज्ञान भवन में सभी युवा और अतिथिगण जितने भी हैं अपना स्थान ग्रहण करके और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और मंच बहुत खूबसूरत फूलों से सुसज्जित है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, रंग बिरंगे पुष्प खुशबू भी बिखेर रहे हैं और साथ में इस खुशबू के साथ एक अलग सी हवा है ये.
1: एटमोसफियर इज रियली फैंटास्टिक, इज रियली इलेक्ट्रिक, यू नो, बिकॉज सी एवरीवन इज लुकिंग टुवर्ड्स द एंट्रेंस to the plenary hall, because very soon I'm sure the Prime Minister will be coming in, walking in with the other dignitaries, and he'll take his seat over here on the dais.
0: और आकाशवाणी के माध्यम से आपको देखा हाल आप तक पहुंच रहा है और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूं तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उसके युवाओं के लिए गुणवत्ता पूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो.
1: यस एंड आवर प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलवेज पुट लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द यूथ, यू नो, द यूथ ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज दे आर द फ्यूचर पिलर्स, दे आर द वंस हु आर गोइंग टू होल्ड दिस नेशन. सो he is putting a lot of stress on them and he sees that all are employed, all get employment, none of them are left without a job, because you know how much frustration it leads to when a person doesn't have a job. So that's why the Prime Minister is working on this and is bringing out these schemes. And then I think the Prime Minister is about to arrive in the plenary hall. People are anxiously waiting. Silence is being maintained. And the announcement is going on that, well, the Prime Minister is about to arrive. He's on his way. And I want to tell you one thing, one more thing. ESIC's growing network of protection and care. This is Social Security for All, which is 3.24 crore plus insured persons enrolled, 14.91 crore plus beneficiaries, which is covering 728 districts. So this is Social Security for All.
0: और अभी सभी जुड़े भी हुए हैं ना, लाइव जुड़े हुए हैं सभी यहाँ. ये महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा भारत हमारे साथ.
1: Yes, yes, yes, yes. Because this is applicable to 728 districts right now. Right now. And already 15 lakh people have already got their employment letter, the job letters, and that total incentive which is going to go to them is 2400 crores.
0: और थोड़ा सा सार देखें एंड्रू तो जरूर बताना चाहेंगे. योजना के अनुसार 1500 रुपए की राशि दो किस्तों में मिलेगी और ये पैसा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पहली बार प्रोविडेंट फंड नंबर जनरेट हुआ है.
1: yes.
0: ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है. और सैलरी 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा ना हो, कम होनी चाहिए.
1: yes.
0: तब ये मिलता है. और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 तक है तो कंपनी को 1,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेगा और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 से 20,000 तक है तो कंपनी को 2,000 रुपए हर महीने मिलेंगे और 20,000 से 1,00,000 तक है तो सैलरी तो कंपनी को 3,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेंगे. इसका आपने जिक्र भी किया था.
1: एंड यू नो दिस की ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन टू जनरेट मोर देन 3.5 करोड़ जॉब्स अक्रॉस इंडिया, प्रमोट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी कवरेज, सपोर्ट फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स. That is what it says, no? The scheme aims to make it easier for young people to enter formal employment while encouraging businesses to hire more workers and expand India's organized workforce. And then support first-time job seekers and then incentivize employers, especially in the manufacturing sector, to create new jobs. See, only when the employees also get an incentive, when they are paid something for every time they give a, they take in a new person, a new job seeker, they also given an incentive which accounts to 3,000 rupees. So why not? They'll definitely try to employ more and more people so that their work also expands, the workforce also expands, and of course it is always on the for the development of the country.
0: Okay. ESIC का बढ़ता सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नेटवर्क 3.24 करोड़ प्लस बीमित व्यक्ति पंजीकृत और 14.91 करोड़ प्लस लाभार्थियों तक पहुंच और 728 जिलों में सेवाएं उपलब्ध और सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक सुरक्षा.
1: yes.
0: ये बहुत
1: yes.
0: जरूरी है. और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बहुत ही ऐसी योजना जिससे सभी को
1: Our Prime Minister is a man with dreams. He wants to take India to great heights and he has achieved it almost. He's taken India to great heights and right now and of course internationally, the world, India has got recognition as a mediator among warring countries because people have so much of confidence on our Prime Minister that they contact him for problems to be solved.

0: चार श्रम संहिताएं लागू, मजदूरी संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदिशा संहिता 2020। 29 श्रम कानूनों का एकीकरण, सरल प्रक्रियाएं एवं एक समान परिभाषाएं और अनुपालन का दबाव कम, पारदर्शी, कुशल और डिजिटल प्रणाली, और फिर कुल मिला के कहें तो प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना जी।
1: And I'm really eager to see our Prime Minister come and press that button, you know, the money will go to 15 lakh people into their accounts. And they'll be getting their letters. And it's going to be a wonderful experience. Preeti, in fact, I've never seen something like this, you know. Just at the press of a button, 15 lakh people, beneficiaries, get the employment letter. India's also gone ahead with the world. When we have advanced, they have gone digital and we have gone digital. So, we are going digital in every field. So, we should be proud of our country, and the people are anxiously waiting over here. There are about 700 people, I think. Almost 700 people are seated over here, right up to the top.
0: जितनी कैपेसिटी है पूरी भरी हुई है।
1: इट्स फुल, नॉट अ सिंगल सीट इज एम्प्टी। पीपल आर, दे ऑल सी, दे आर ऑल जॉब सीकर्स एंड मोस्ट ऑफ दीस पीपल दे विल बी गेटिंग देयर जॉब्स। दे ऑल कीपिंग देयर फोन्स रेडी ऑन द टेबल। सो एज सून एज द प्राइम मिनिस्टर प्रेसेस द बटन, इट विल कम टू द फोन दैट दे हैव गॉट द लेटर।
0: An amount will be transferred.
1: Yeah.
0: और कैमरामैन बिल्कुल तैयार इन ऐतिहासिक क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए, और आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन कह सकते हो, नहीं? आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है, और माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित होगी और रिमोट बटन प्रेस करके, और देश में रोजगार के नए मौके बढ़ाने और युवाओं को अच्छी नौकरियों से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है, ये कह सकते हैं।
1: एंड सी द सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयज, यू नो दिस इज द एलिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड विद द ईपीएफओ दैट सक्सेसफुली जनरेट नेट न्यू एम्प्लॉयमेंट टू क्वालिफाई स्मॉलर फर्म्स फ्यूअर देन 50 बेसलाइन वर्कर्स मस्ट hire at least 2 new employees, while larger firms, 50 or more baseline workers, must add at least 5 new employees. And the financial benefit is that the government pays companies up to rupees 3,000 per month for each additional new hire whose salary is within the 1 lakh rupees threshold, provided they are retained for at least 6 months. And the duration of the incentives are covered for 2 years across all sectors. However, to heavily support the manufacturing sector, businesses operating in manufacturing receive extended incentives lasting up to 4 years. And then the payout channel is, payouts are routed straight into the employer's verified PAN-linked company bank account. That is very important. See, every account has to be linked with a PAN number. Yeah. And then registration processes, eligible entities can participate through designated digital channels. For employers, companies must visit the official Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana portal to finish a quick one-time institutional registration. And then for the employees, the first-time workers need to register and generate a universal account number, UAN, utilizing the face authentication technology built directly into the Umang app.
0: ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ और उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार जी। और फिलहाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ एक पलों में मंच पर होंगे, और उनके साथ आएंगे श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, और उनके साथ उनको स्कॉर्ट करेंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुन्नानी जानी और साथ में दो युवा लाभार्थी भी होंगे.
1: एंड सी द ब्यूटी इज दैट द पर्सन विल बी गिविंग द बुके इज वन ऑफ द यंग बेनिफिशियरीज एंड ही विल बी सो हैप्पी इन हिज हार्ट दैट आई एम गेटिंग अ जॉब एंड अ प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन दिस जॉब टू मी. So, and I'm telling you, it's really going to change the lives of these people, all these beneficiaries who are sitting over here in the plenary hall of Vigyan Bhavan. And they'll be dreaming, you know. I'm sure I'm going to come up. And I think they're all looking towards the door. I'm sure the Prime Minister is about to arrive. And once he arrives, then the other deliberations will take place. The Union Minister, he'll give the welcome address. And then the Prime Minister will be, there'll be a filming of the short film that will be filmed on the screen, and then after that he'll be clicking on the button, the magic button.
0: magic button
1: which will give jobs to about 15 lakh people across the country. And then of course the Prime Minister will give his speech, and I'm sure people are waiting for him to give his speech because his speech has always been very inspiring. The young people, you know, it has been a real inspiration for them. You know, he's been an inspiration to the country. And so many followers of our Prime Minister, they all know that really whatever he does is something, you know, means he wants to build India into one of the superpowers in the world, bring the rank of our country to the top. And his dreams, you know, of making India a strong economic power, and is on the way. Is on that route right now.
0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है और ये इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा और जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और ये बहुत जरूरी भी होता है. अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए का प्रोत्साहन मिलता है और इससे सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाता है और प्रोत्साहन भी मिलता है और आर्थिक विकास को गति देने में विनिर्माण के कार्यनीतिक महत्व को देखते हुए विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताएं 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं जबकि अन्य सभी सेक्टरों के नियोक्ता 2 वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं.
1: And see the dais, how many bouquets are there? The Prime Minister will be sitting right in the middle. On the right, he'll be flanked by the Union Minister and on the left by the Minister of State. And the board behind, you know, it's a beautiful one. There's a screen on the board, on the plenary hall and the dais, just behind the dais, there's a beautiful board. And on that, the Prime Minister, the Rozgar Yojana, everything is given, all the details are given on that.
0: आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए.
1: Yes, and this, you know, I want to tell you, in fact, I've seen over the years, I think this is the 12th year, he's completed 12 years of his rule as the Prime Minister of our country. And all these years, you know, his intention has always been to generate more and more employment, right? Just to remove this unemployment, reduce it to the max, minimum, reduce the unemployment to the minimum so that more and more people are employed. And they are able to overcome all the financial problems that they go through. And because through all these schemes, you know, our Prime Minister is helping out the people to see that they are self-sufficient, they are independently, they're financially independent. And very soon our Prime Minister will be coming in and people are getting ready. All are viewing towards the gate, towards the entrance to the plenary hall.
0: जो माननीय प्रधानमंत्री जी की युवा लाभार्थियों से बातचीत हो रही है जब वो लौट करके यहाँ आते हैं तो उनके अंदर जो उत्साह होगा उसे हम सब महसूस कर सकते हैं क्योंकि वो तो कभी कम नहीं होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वन टू वन बात करना ये एक प्राउड मोमेंट होता है नहीं
1: That's true. And you know, I attended one of these days, you know, when the Prime Minister spoke to the students all over the country through the live telecast, you know. And you won't believe the way he encouraged the students. He said that don't worry. If you get low marks, it's not that everything is closed for you. Still, you've got a job. You've got something. You've got a future. Every person has a plan, a talent. God has given a talent in you, and He will see that it, you come up in your life. So He said that if low marks will not, it's not an end to anything. So you know, that's how He encourages. And students, I'm sure, you know, they go and write the exam with confidence. And here also, these young people, these beneficiaries, they have come here with confidence, with the hope that our Prime Minister is helping us to get a job.
0: आपने जिक्र किया बच्चों का तो मुझे याद आ गई परीक्षा पे चर्चा कालकटरा स्टेडियम कैसे भरा रहता था और बच्चे कितने उत्साह के साथ प्रश्न पूछते थे और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बात कर लेते हैं तो उनमें ऐसी कोई बात होती नहीं कि हमारे लिए पढ़ना कहीं मुश्किल हो सकता है क्योंकि उनकी एक किताब आती है जो जिसको पढ़ने के बाद बहुत उत्साह भर जाता था बच्चों में और बच्चों को लगता था परीक्षा अरे इसे देना तो बहुत ही आसान है कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं है ना तो ये शब्द हमारे अंदर रच बस जाते हैं और युवा उससे जुड़ जाते हैं और आज भी युवा साथ में बातचीत कर रहे हैं तो मैं सोच ही रही हूँ कि बाद में कितना ज्यादा उनके अंदर वो उत्साह होगा कि आज हम क्या लेकर के जा रहे हैं यहाँ से
1: Yes, and one more thing, you know, when he talks to when he talks to the students, young people, when he talks to them in such a free manner, you know. And even the children, they feel so comfortable. The young people also feel comfortable. For not only young, you know, old people, whomsoever he talks with so much of freedom, like he makes them feel very comfortable. So even during this Independence Day celebrations, you know, he goes among the children, goes and. And mingles with them and what a beautiful atmosphere you know so all these things he has got all these qualities you know to mingle with people and take your he listens to your problems that is the greatest thing with our prime minister he listens to your problems and he tries to solve them
0: और जब समस्या का समाधान मिल जाता है तो राह खुद ब खुद बन जाती है
1: yes.
0: फिर तो राह रुकेगी नहीं आप जहां जाना चाहते हैं आपको खुद ब खुद राह मिल जाएगी
1: yeah.
0: है ना
1: एंड सी हु एक्सपेक्टेड दैट 3.5 करोड़ पीपल आर गोइंग टू गेट जॉब्स इन इंडिया राइट द इम्प्लीमेंटेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड 15 लाख हैव ऑलरेडी गॉट इट टुडे दे विल बी इट विल बी कंफर्म्ड फॉर देम थ्रू द प्रेस ऑफ दैट बटन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड देन ओवर द ईयर मींस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3.5 crore people in India will be employed. They'll be having the job under this Viksit Bharat Rozgar Yojana, the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And Ministry of Labour, you know, they have always, the Labour and Employment, they've always carried out these Rozgar Melas, you know, even in the past. So through that, they've generated so much of employment for people who have not had any jobs. And though they get a meager amount, some may get very meager amount, some get a good job. But it helps them. At least they don't starve. They get two meals a day. They're able to earn enough to get two meals a day. So that is the main aim of our Prime Minister, to see that everyone is comfortable, everyone has a job, everyone earns.
0: जब हम परीक्षा देकर पास करते हैं हमारा रिजल्ट आता है एंड्रू तो सबसे पहले मन में एक ही भाव आता है ना कि अच्छा अब हमें नौकरी कहाँ मिलेगी और जब आपकी नौकरियां बिल्कुल आपके सामने ही होती हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी बहुत ही बेहतर हो गई कोई समस्या ही नहीं है अब आपके पास और वो भी इतनी आसानी से आपको सब कुछ मिल गया नहीं
1: yes.
0: तो अब यहाँ पर एक बार पुनः बताना चाहूंगी रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार
1: So, in fact, the person right in front of us, you know, there are deaf and dumb people also over here. And there's one person. He's translating through action. It's really interesting to see him, you know, the way he's doing the music, everything. And his, say, and when the words, you know, when the words come, he's translated it through his actions, you know. And it's really very interesting, you know. And just see the people over here. You can see the people. They're all seated, waiting anxiously for the letters to come on their mobile. In fact, most

0: of them have got it, but still, it'll be confirmed after the Prime Minister presses the button, the magic button today.
1: उसके बाद हस्तांतरित किया जाएगा.
0: Yes.
1: जब रिमोट का बटन प्रेस होगा तो राशि हस्तांतरित हो जाएगी. बस इंतजार तो कुछ ही पलों का है, ज्यादा नहीं. और युवा लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत चल रही है और उनके लिए ये बहुत ही अनोखे क्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है और इन ऐतिहासिक क्षणों को वो समेट कर रखेंगे हमेशा. और ऐसे लगता है ना कि ये क्षण बस रुक जाए और बातचीत चलती रहे, बातचीत खत्म ना हो. नहीं,
0: yeah, I think everything has stopped. They are all in attention and I think the Prime Minister is arriving with other dignitaries. He'll be taking his seat on the dais. And once he comes in, the program will begin. He'll be felicitated with a bouquet by one of the beneficiaries. That'll be a privilege for the beneficiary, you know, the student, young student, who'll be coming and giving the bouquet to the Prime Minister. And the Prime Minister, I think, has arrived. He has entered. And he's entered. And he's walking in the most smartest way. Our Prime Minister.
2: दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का
3: एक बार
2: जोरदार तालियां हो जाएं. देवियों और सज्जनों, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए.
3: और उनके साथ इस अवसर की शोभा और बढ़ा रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदला जी का.
2: आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान ग्रहण करें.
3: मैं मन्नत भाटिया
2: और मैं जयवर्धन गोयल,
3: माई भारत वॉलंटियर्स, आप सभी का.
0: The Prime Minister has arrived. He's taken his seat on the dais.
3: माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको सविनय सूचित करना चाहते हैं कि आज
0: flanked by the Union Minister on his right and by the Minister of State to his left.
1: और सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और अब सब ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया.
2: अनुरोध करेंगे हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बेनिफिशियरी सुश्री शिखामणि डेका जी से कि वे पुष्प देकर मंच पर विराजमान हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें. एक बार जोरदार तालियां.
1: पुष्प से स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री जी का एक युवा लाभार्थी ने.
2: यह सम्मान का माध्यम है, यह आत्मविश्वास का आधार है और यह विकसित भारत के निर्माण की सबसे मजबूत नींवों में से एक है. यही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का विजन है, यही रोजगार राष्ट्रीय समागम का संदेश है.
3: अब हम अनुरोध करते हैं माननीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से कि वो अपना स्वागत संबोधन दे.
0: And now the welcome remarks by Shri Mansukh Mandavya, the Minister for Labour and Employment. He walks to the podium to give his speech.
4: Pradhan Mantri, Viksit Bharat Rozgar Yojana ke antargat, Prosahan Rashi Vitran karne ke avsar par, hamare beech mein upasthit, Adarniya Pradhan Mantri, Shri Narendra Modi ji, मेरी सहयोगी मंत्री आदरणीय शोभा करंदला जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न राज्यों से जुड़े आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के श्रम मंत्रीगण और सभी लाभार्थी भाइयों एवं बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है. नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है. और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात करते थे, प्रो लेबर थे, उसको इंडस्ट्रीज के खिलाफ माना जाता था, और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था। लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है। आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी, उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए 4 महत्वपूर्ण लेबर कोड भी लागू करा। पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा। वो बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड आपके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देता है। देश में 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की आपने गारंटी दी है। महिला वर्कर्स के हित के लिए एस्टेब्लिशमेंट में क्रेज की भी आपने गारंटी दी है। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयर को 1 साल बाद ही ग्रेजुएटी मिले उसकी भी आपने गारंटी दी है। जो पहले कोई वर्कर्स काम करते थे और 5 साल वो कंटिन्यूस काम करते थे तो ही ग्रेजुएटी का प्रावधान था, 40 साल से के अधिक उम्र वाले सभी हमारे एम्प्लॉयज को वर्ष में 1 बार हेल्थ चेकअप करने की भी आपने गारंटी दी है। 12 साल में आपने डेवलपमेंट तो किया, उसके साथ भी आपने रोजगार निर्माण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। सामान्यतः रोबस्ट इकोनॉमी का ये नियम है, कोई भी देश की इकोनॉमी 1% ग्रो करती है तो उनके साथ 1% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना वो आदर्श शासन व्यवस्था मानी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सामने 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11 यानी कि 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। केवल ये फिगर नहीं है, उसके साथ जो एलाइन करते हैं हमारे देश की रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक आजादी के पहले बनी है, और 1980 से रिजर्व बैंक देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर फोर्स की डिमांड, एनर्जी कंजप्शन, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में जो गतिविधि हो रही है उसके डेटा को एनालिसिस करती है और उनके आधार पर क्लेम डेटा डिक्लेयर करती है। ये क्लेम डेटा एनालिसिस होता है 1980 से, और यही डेटा का जब हम विश्लेषण करें तो 2004 से 2014 एक दशक में केवल देश में 2.9 करोड़ 9 लाख जॉब क्रिएट हुए थे। और रिजर्व बैंक ने कहा कि 2014 से 2024 एक दशक में, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के युवाओं के लिए 17 करोड़ जॉब निर्माण करके देश के युवाओं को हाथ में काम दिया है, और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, लेकिन यही आपका प्रयासों से आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% है, जो ग्लोबल एवरेज 4.8% है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जॉब भी निर्माण करा, आपने इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया और उनके साथ आपने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत में 2014 के पहले 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में थे। आज आपके प्रयासों से 12 साल के बाद देश में 64.3% यानी कि 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ऑलरेडी आए हैं और माननीय

0: प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरंदेशी दृष्टि से आपने देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आए। मेरे देश के कोई युवा प्रतिवर्ष 1 से 1.5 करोड़ युवा वर्कफोर्स में आते हैं जिसको जॉब चाहिए, और आप तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपने जब तीसरी बार भारत में सरकार बनाई और 2025 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के रोजगार के लिए भी सुनिश्चितता करी, और बजट में ही आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा। ये पैकेज क्या था? 2 लाख करोड़ का ये पैकेज 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा। उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया का आउटलेट है, जो 2014 के पहले की 20 साल की सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का बजट का हिसाब करे तो भी 1 लाख करोड़ नहीं हो रहा है। मेरे देश के युवाओं के लिए, उसकी रोजगार की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जी आपने 1 लाख करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट करके 3.5 करोड़ जॉब यही योजना से आपने सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई है। उसका फलस्वरूप आज देश के 15 लाख एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप 2400 करोड़ रुपया सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के अकाउंट में आज सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, हम सबका हौसला बढ़ाया, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं।
1: श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत किया आपने। और अब एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर, कुछ एक पलों में, है ना?
2: स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना।
3: देवियों और सज्जनों, अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो शब्दों को चेहरों में, जिंदगियों में और सच में बयां करती है।
4: भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो, या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की।
5: आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है।
4: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के बराबर 15,000 रूपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए कम से कम 6 महीने लगातार रोजगार में बने रहना होगा। 1 लाख रूपए तक वेतन वाले कर्मचारी ही इस योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता को भी प्रोत्साहित कर रही है। अब यदि कोई नियोक्ता नया रोजगार सृजित करता है तो उसे 1 लाख तक की मासिक सैलरी वाले हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रूपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को ये राशि 4 साल तक मिलेगी। और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
6: हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया, जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़े।
7: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया। आज मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ।
4: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार।
2: That was a screening of a short film on the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And that was a short film. And now very shortly, the Prime Minister will be distributing the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana benefits to the beneficiaries. And the people are waiting anxiously and the button is coming right in front. That is a remote control button. And the Prime Minister will be pressing the button. As soon as he presses it, well, about 15 lakh people all over the country will be getting their appointment letters and they'll be getting the money. And the Prime Minister presses the button and you can see the people cheering.
8: स्वागत किया सबने इस बेहतरीन क्षण का और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित हो गई।
3: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डिस्पर्स करने के लिए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की इंसेंटिव की इस इकाई से 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
2: What a time, what a moment. The Prime Minister just pressed the button and all the beneficiaries, they've got the benefits.
3: जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें।
1: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी,
3: तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
9: मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, बहन शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव, और जैसा भी मंच संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब 2 लाख लोग अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़े युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आम तौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती हैं, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता था छोटा ही रहना अच्छा है और कभी बड़े होने की संभावना, उसको लगता है ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है, हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए और ये उद्योग को भी जरूरत होती है और इस योजना से वो द्वार भी खुला है। और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था, उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। यह उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे नौजवानों को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे, मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी कि इतना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है। एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है, भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी है। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है लेकिन वो कह रहा था कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे। इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी, वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। साथियों, आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है, हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा, फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं, वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, ये समझौते भी देश में लाखों की संख्या में नए रोजगार का बनाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है, हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है, लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना हो, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधाएं सुनिश्चित करना हो या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों

संख्या में मेरे उद्योग जगत के साथी भी उपस्थित हैं। आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है, 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास जाएंगे जिनके पास स्किल टैलेंट होगा, जिनके पास इनोवेशन होगा, जिनके पास क्वालिटी होगी। और आज भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता है। और इसलिए मैं भारत के उद्योग जगत से भी कहना चाहता हूं, आज जो अवसर हमारे सामने हैं उन्हें हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा, हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा, हमें नए उत्पाद बनाने होंगे, हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है। पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं। भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, हमें इसका भी पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एग्रीमेंट्स नए बाजार बना रहे हैं, नए मार्केट्स को उपलब्ध करा रहे हैं, दुनिया में मेक इन इंडिया ब्रांड्स के लिए नए अवसर पैदा हो ही रहे हैं। और इसलिए हमें इन अवसरों को गंवाना नहीं है दोस्तों। साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं। जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप अब वैकल्पिक नहीं है, वो ये 21वीं सदी की आवश्यकता है। भारत के उद्योग जगत को अपने लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करना ही करना है, और भविष्य के लिए नए अवसर भी तैयार करने हैं, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा, वह टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। और इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी एक ही है, और मैं उद्योग जगत के साथियों को बार बार कह रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों का फायदा लेने की एक सबसे बड़ी सफल जड़ी बूटी एक ही है, और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी। शिक्षा की क्वालिटी, स्किल की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी। दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है, और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं
जहां वो साकार होते हैं।

0: एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खुलता है और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम, ये मेरी भी प्रेरणा है। और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं है। एक जीतता है तो दूसरा सीखता है, हारता कोई नहीं है। युवा मन की एक ही कसौटी है, जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदि हो, जो सपनों को सिद्ध करें और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विकसित भारत 2047, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होकर रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है। और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: What a fantastic speech by our Prime Minister.
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री।
1: Full stress on the youth of the country. And he says that they are the future pillars of our country and the country rests on their shoulders. That's why he has been putting so much of stress on the youth. And he said that their dreams is what my oath is. My oath is the fulfillment of your dreams.
3: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरक उद्बोधन ने देश के युवाओं में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया है। और ये जो राशि आज हस्तांतरित हुई है, ये राशि युवाओं के परिश्रम का सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि आप सपने देखिए, उन्हें साकार करने का संकल्प हम लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना एंड्रू। और माननीय प्रधानमंत्री अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ विज्ञान भवन से प्रस्थान कर रहे हैं। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी टीम इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वीके तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र, बाबूलाल मीना और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
4: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे हिंदी में प्रीति मोहन और अंग्रेजी में डी एंड्रयू।
5: रोजगार मेला लेसिंगनी कुंतरु को मरी लेने ना इकाई खुम नजरी बा भारत की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ना पीबवारोल अधमन ताबीरी बा साकसबानी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल नी हाउसिंग मणिपुरी मतम विशेषिंग मतम मतम तमिनेशी कुडोल की आहन बदा ताबीरेशी

पांग तोरैया हुन सुने तम ने कुम धरक पा तोरैया हुन सुबद थौरुनु पाक में लैरमी लौ फाइरो मनिगी मया सुरक पा थौरुनु पाक जक लाइर ब खंब नौ इपाई बुवा पान हुने ताई बंग मालंग पान ने लैरिंग ऐ तरा सयोन थोक ने साब म फम हाइबे दो मसी वइर माले को हाइर देनो हा पंधौ न पारिया कुवार उबिगनु कोई पाय मोदन थौदु नुंगदो मराय बहुम न कल्ली रग सिंगे लैरांग लै पोलने कोरिंग थांजौ ने तरा सयोम ने थौदु नुंग पाक थक थां कल्ली रग लाइर खंबन लमलेंगी कोलवाई तुरियल सेलिब लाई सिंह सेल लदुरक्त लाइर मागी मखों मखुल दो सेंग ना हम तो शरीर गऊ हा पंधवी पाई बुंगो न पारी अकुवार उबिगनु को पंधव दनौ थौदु नुंग पाक दो मराय बहुम लक कल्ले मबधौ थांग जिंग लाइद कटक दब सिंगे लैरांग सेंग बयाव बल लैरांग यंदा।

0: ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕ ꯔꯤꯝꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯇ ꯏ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ.
1: ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩꯁꯤꯡꯗꯤ
0: ꯑꯆꯣꯟꯕ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯐꯤꯔꯣꯜ ꯂꯤꯠꯄꯤꯌꯨ, ꯑꯌꯨꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯔꯦꯄꯦꯂꯦꯟꯠ, ꯃꯁꯀꯤꯇꯣ ꯀꯣꯏꯜ, ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯋꯦꯄꯔ ꯃꯦꯠꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ.
1: ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯕ ꯄꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡ, ꯇꯌꯥꯔꯁꯤꯡ, ꯆꯐꯨ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯀꯞ ꯀꯧꯇꯥꯅꯆꯤꯡꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯨꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯊꯝꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ.
0: ꯄꯥꯎ ꯆꯦꯟꯖꯔꯤꯕ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ.
2: ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 7 ꯃꯈꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ.
0: ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯆꯤꯇ꯭ꯔ ꯚꯥꯅꯨꯅ ꯄꯥꯎ ꯄꯥꯖꯔꯤ. ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ. ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥ ꯀꯣꯛꯍꯟꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯄꯥꯜ ꯑꯖꯌ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯚꯜꯂꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ. ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯕ ꯇꯥꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯝꯕꯤꯗ ꯃꯥꯡꯖꯤꯜ ꯊꯥꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ. ꯖꯟ ꯀꯂ꯭ꯌꯥꯣ ꯁꯤꯕꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯖꯤꯂꯥꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯌꯥꯏꯐ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯍꯜꯂꯤ. ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯄꯤ ꯑꯦꯝ ꯕꯤꯛꯁꯤꯠ ꯚꯥꯔꯠ ꯌꯣꯖꯒꯥꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤ ꯗꯪ ꯑꯁꯤ ꯂꯨꯄꯥ 2,00,000 ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯡ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯤꯔꯃꯂꯥ ꯁꯤꯇꯥꯔꯥꯃꯟꯅ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯗ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯁ꯭ꯄꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ. ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯂꯦꯕꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯥꯂꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯕꯤꯛꯁꯤꯠ ꯚꯥꯔꯠ ꯔꯣꯖꯒꯥꯔ ꯌꯣꯖꯅꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ. ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯑꯀꯥꯝꯄꯥꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯅꯤꯂꯤꯠ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯄꯥꯜ ꯑꯖꯌ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯚꯜꯂꯥ, ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯍ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ. ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯄꯥꯜ ꯑꯖꯌ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯚꯜꯂꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ 2030 ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2028 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯂꯤ. ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯅꯤ. ꯃꯁꯤꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯃꯅꯤ. ꯁ꯭ꯔꯤ ꯚꯜꯂꯥꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥ ꯀꯣꯛꯍꯟꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ. ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯔꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯗꯁꯨ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ, ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯄꯥꯜꯅ ꯍꯥꯏ.
3: Every job created strengthens a family, contributes to economic stability, and brings us closer to the goal of a developed nation. Under the transformative leadership of the Honorable Prime Minister, India has witnessed remarkable progress in infrastructure, digital transformation, skill development, entrepreneurship, and social welfare.
0: ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯗꯨꯅ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯕ ꯂꯩꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯌꯥꯏꯐ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ. ꯌꯥꯏꯐ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯌꯧꯍꯟꯕꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯕꯤꯚꯥꯒꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯩ. ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯌꯥꯏꯐ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯌꯧꯍꯟꯅꯕ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯦ. ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯌꯥꯏꯐ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯇꯤꯡꯅ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ. ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯕ ꯇꯥꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯝꯕꯤꯗ ꯃꯥꯡꯖꯤꯜ ꯊꯥꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ. ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ 36ꯀꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯉꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ. ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯟ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯅꯧꯅ ꯁꯥꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯁꯪꯒꯥꯔꯗꯨꯅ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯝꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯔꯣꯜꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ. ꯍꯥꯏꯀꯛꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯜꯂꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯁꯦꯜꯅ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯝꯕꯤꯗ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ. ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯎꯟꯈꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯟꯅ ꯆꯩꯅꯕꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗ ꯑꯄꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯤ. ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯤ. ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯅꯕꯁꯨ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤ. ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯟ ब्लाइंड स्कूल अपग्रेड तौदना उब की शक्ति लेट्रब महरूसी अतोप मफम चतना अवांग ताके मह तब खुदचाब पीनब होनगनी मुख्यमंत्री ने थाजब पीखी श्री खेमचा है
4: हाइकक पोपी हाइब सराउंडिंग तमीनरीब फुलूक हाइजबाई आईमोल चौथे मरिंग अनाल लंकांग तराव कम्युनिटी कुंथा तरुक की मनुंग तरेती खुनसिद तारे दो अखोई अपुन्न मणिपुरम की वाखलद पुन्न हिमिनब नतन अतोप लंबी सुना कोई चाने हिमिनब कोई वाखन खनमिनब मतौ ताई मरक सिद
0: केंद्र एन डी ए सरकार शासन पारप चाह तरह सुरपी लेना आकाशवाणी इम्फाल की इ पाव कंबूनासी अकोब की खल अयिंग असाक सेंदन थम्ब भारत सरकार पाखल्ब थरम खननेबी थोरमें पुंग तरह मिनट संगाई चैनल संदोकनी हिरमस्त मणिपुर सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज विभाग की डायरेक्टर डॉक्टर तोरंगबम ब्रजकुमार आकाशवाणी इम्फाल की इपाव कांबू की डेस्क एडिटर खेत्रीमयूम गंगा की उन्दन वारी वाई साब की थोरम ताब फंगी वारी वाई सानब की थोरम हयें थाजी पुनिपान आकाशवाणी इम्फाल की कांगला चैनल ताब फंगी पाव की मरक थन अटेंब ब्रेक
5: नुपीदामदी नुपासिंगद तोयना नागनब थायरोइड की अनाब मखलसुने येंगबगा लोइनना मणिपुरद अहानब थायरोइड स्कैन की फैसिलिटी लैरब AOI बबिना स्पेशलिटी हॉस्पिटल थायरोइड कैंसर की हाई डोज आयोडीन थेरेपी की खुदोंचाब पीबगा लोइनना CMHT PMJAY हेल्थ कार्ड अमसुंग गवर्नमेंट एम्प्लॉई सिंग की सुखुदोंचाब पिजरी डॉक्टर सिंह ना ट्यूमर बोर्ड फमदुना अनाब सिंग की लायेंगद चाउना मतेंग पांगली अकुप मरोल की दमक NABH फंगलब AOI बबिना स्पेशलिटी हॉस्पिटल सजीवा जेल रोड खबई सोई इम्फाल ईस्ट तानबियु
6: डायमंड्स प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी रिम्स इम्फाल ब्रेस्ट लंग कैंसर नारब पेशेंट थ्री मोलिक्यूलर टेस्ट की खुदोंचाब पीजरी टेस्ट ब्रेस्ट कैंसर की ना ERPR हार्ट टू नोय KI67 लंग कैंसर की ना EGFR म्यूटेशन टेस्ट ALK ROS1 PDL1 IIC टेस्ट टेस्टिंग कैंसर लायेंबद टारगेटेड थेरापी चाउन अकुप मरोल की दमक डायमंड्स प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी रिम्स तानबियो
0: ताबिरिब पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी जन कल्याण सिविल राइज की तोान तोब जिला पांथोली डिस्ट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेजोल चतर जन कल्याण सिविल कैंपेन की निमित आउटरीच प्रोग्राम पार्बू पांथोरे थम आधार एनरोलमेंट अपडेट तब हेल्थ चेकअप तोान तोब सरकार पाखल स्कीम रजिस्ट्रेशन तब यौन CMHT PMJAY की हेल्थ कार्ड पीनब एनरोलमेंट ड्राइव पांथी सरकार पाखल यफे थर मिपुम तीन खाब की पांदम चल जन कल्याण सिविल कैंपेन कक्षिंग जिला की एस डी ऑफिस कॉम्प्लेक्स वाईखों पांथी कैंपेन MLA डॉक्टर युमनाम राधेश्याम कक्षिंग जिला की डिप्टी कमिश्नर हकना चतना पीरब खुदचाबी कूपी थौबाल जिला की ओर हूं चुन चतर जन कल्याण सिविल कैंपेन चहुम रोम सरकार की यफे थर कानब फंगी तोान तोब यफे थर कानब फंगनब अप्लीकेशन क्या डिप्टी कमिश्नर पीछे थरम हक्सल यौन तोान तोब विभाग की स्टोर कुलूद हांगद खुदचाब पीखी बिष्णुपुर जिला की ओर इसो की चिंफू निथौसेंब लेम हराबूद पांथोरे थोरम लिंग हेनबद सरकार की यफे थर कानब फंगी चांदेल चिरोचानपुर जिला की ओर जिला थाक पांथप जन कल्याण सिविल पब्लिक वेलफेयर कैंपेन मई पाक लोशिंग्रे मरी लेनब डिस्ट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन सिंह हूं चतर कैंपेन तोान तोब विभाग की स्टोल हांग सरकार पीरब खुदचाब की मामद खाखी कानब कयासु फंगी मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन RNLM NTL का खुसन सिंधुन नोम लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम कांपोपी जिला के संगाई नमदा बैप्टिस्ट चर्च कम्युनिटी हॉल पांथोरे थोरम मफम पीरब हक आयन की चना पथा खाब की पांडम पांथोपनी थरम वांगद मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन TS टिंग मोनसांग चतब मई मिने थीब होनाब aina piriba ngalo sing khangjin bagi tangai fada balai nupi obising na aining thina khanglaba matamda kunai asigi nupi obising gi mapangan kankhan ba ngam hangan.

मखल मथिल की तोंगा तोंगन पर थरोम सिंह लाटुक शरी बस या आकाशवाणी उफाल के एफएम संगाई चैनल दी हाउसिक लाटुक शरी गुड इवनिंग मणिपुर कसे की गुड इवनिंग मणिपुर थरोम सिंह की दम्बक अदम नाइ खोई की मोबाइल नंबर 9863102016 नंबर अमुकने निंग सिंह जगे 9863102016 हरीब नंबर से दखोड़ा विवाह मणिपुरी फिल्म न त्रगम अटमिसेसिंग एसएमएस समेत व्हाट्सएप मैसेंजर की खुटांग दा कन बिरक्तु नगसी की गुड इवनिंग मणिपुर के थोरम सीधा शरुक्या भीयू अदम के एसएमएस नाइजरी

0: अभी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हटा इम्फाल ईस्ट के अहम फम खर की दमक कैंडिडेट सिंह की दरखास्त कौड़े अहन बद मार्केटिंग मैनेजर की फम अमा माही की थाक एम बी ए लोना लम सिद यामत्रबद चही अमा की एक्सपीरियंस लेब ओइगदबने अनिसुबद आई सी यू नर्स अनि जी एन एम बी एस सी नर्सिंग लोना चही अनि की एक्सपीरियंस लेब अहम सुबद स्टाफ नर्स की फम मंगा जी एन एम बी एस सी नर्सिंग लोना चही अमा की एक्सपीरियंस मरीसुबद डायलाइसिस टेक्नीशियन की फम अमा डिप्लोमा इन डायलाइसिस टेक्नीशियन लम सिद चही अमा की एक्सपीरियंस लेब मंगा सुबद रिसेप्शन अमा ग्रेजुएट ओइबग लोना कंप्यूटर नॉलेज लेब यामत्रबद चही अमा की एक्सपीरियंस लेब ओइगदबने तरुक सुबद सिक्योरिटी की फम अमा महै की था क्लास आइट नत्रग टेन पास यामद्रबद चही अमा की एक्सपीरियंस लेब ओइगदबने फॉर्म थाजनबगी अरोइब मतम जून की तांग कुन मंगाने अकुप मरोल की दमक अफी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हाता इम्फाल ईस्ट तानबियो
1: गुड इवनिंग मणिपुर की थमजरीबा मोबाइल नंबर अमुखाने निगसिंग जगे 9863102016 हौजिक मथंग एसएमएस लौखचरी बे एसएमएस असि नंबोल नाउरियम दगी ओइनाम लोइदांग मरुप असिने थाबिरकपनी खनबिरकली बे से असि मतम इसैनी हैसनाम रमेश न सखपा ओसी समरेंद्र ना सेरिंगो मतम इसैनी खरोल थमजरी टर्मिनेसी

0: उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी।

सीता हंजेखेबगे लोइनेना तोंगन तोंगन ब सैसक पसिंग नसक प गीत लानथुकसे बलोइसिरे हौजिंग नुमिदांगि पुंग धारा मखाइ तारे संगाई सिनल गि नुमिदांगि थौरम सिंग लोइसिनजेन ब पुंजा दु यौरकले हयिंग जुन गि तांगकुन थांगजे नुमिद संगाई सिनल गि थौरम सिंग अयुक पुंग मंगा मखाइ ताब मदम दगि हौना संदुक्षगनि संदुक्षगदव मेगाहर्ट्ज चाम अहुम दशमिक मंगा मतम मधु फाउदंगी ओइनदि थौरम ताबिरि बेसिंग दगि कायनेनबय याथंग निजेरि पिनबिरिसि जय हिंद।

सुरीला सा सफर, सुरीली सी डगर, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हर सिंगार के सुरीले सफर पर आपके साथ मैं कुसुम। सांवली रात का सितारों भरा आंचल लहराता है, चांद के चेहरे में कोई चेहरा सा नजर आता है, पलकों पर ख्वाबों की आहट से दिल धड़कता है, हवाओं की सरगोशियों में कोई गीत सा बजता है, कहीं वो गीत ये तो नहीं। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में फिल्म चा चा चा का ये गीत आपके

एक चमेली के मंडवे तले सितारों की छाव में समाज के रसूम से दूर दो दिल जन्मों जन्मों के बंधन में बंध जाते हैं। मखदूम महीनुद्दीन का लिखा ये गीत फिल्म चा चा चा से। कहते हैं कि ये नज्म मखदूम ने तब लिखी जब उन्होंने दो प्रेमियों की एक कब्र को देखा। उन प्रेमियों को इसलिए मार दिया गया था क्योंकि वे समाज के अलग अलग वर्गों से थे। कमाल है ना, कैसे गीतकार शायर अपने भीतर जमाने भर का दर्द और खुशी समेट लेता है और फिर इसी दर्द और खुशी को वो गीत बनाकर जब कागज पर उतारता है ना, तो फिर वही गीत हमारे दिल की धड़कनों पर बजने लगते हैं। बशीर बद्र साहब लिखते हैं कि मेरे साथ तुम भी दुआ करो यूं किसी के हक में बुरा ना हो, मेरे साथ तुम भी दुआ करो यूं किसी के हक में बुरा ना हो, कहीं और होना यह हादसा कोई रास्ते से जुदा ना हो। अगला गीत हमने लिया है फिल्म वो कौन थी से, लता मंगेशकर की आवाज में।

हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है? अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें और दिल सवाल करता है कि इतनी दिलकश क्यों होती हैं खुशफहमियां? खत्म होने से पहले रंगीन क्यों हो जाते हैं ख्वाब? बिखरने से पहले क्यों हसीन लगते हैं फूल? क्यों बेवफाई से पहले खूबसूरत होती है मोहब्बत? क्यों मिलन का पीछा करती है जुदाई और दिन के पहलू में क्यों छिपी होती है रात? इन्हीं सवालों के भंवर में जब उनसे मुलाकात हुई तो दिल कह उठा कि जिंदगी धूप, तुम घना साया। आइए सुने फिल्म साथ साथ का ये गीत जगजीत सिंह की आवाज में।

यकीनन वो किसी की मोहब्बत होती है जो जिंदगी को एक तरफ तो हसीन बना देती है तो वहीं दूसरी तरफ हंसाती है और रुलाती है. हंसना तो ठीक लेकिन रोना, हाँ मोहब्बत में अगर उम्मीदें ज्यादा हों तो दर्द ही देती हैं, है ना. ना शिकवा ना उम्मीद ना मशवरा कीजिए, अगर जाने वाले ने जाने की ठानी है तो जाने ही दीजिए. ये और बात है कि किस्से तेरी नजर ने सुनाए न फिर कभी, हमने भी दिले दाग दिखाए न फिर कभी. ए यादे दोस्त अब तू जी भर के दिल दुखा, शायद ये रात हिस्र की आए न फिर कभी. फिल्म रुदाली का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपके लिए.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 19 जून की रात है, निसंदेह आपकी पलकों पर नींद दस्तक दे रही होगी, है ना। ऐसे में जो ख्याल होते हैं ना, वो उड़ जाते हैं कहीं गुमनाम सफर पर। शायद वो सफर मोहब्बत हो। कभी कभी मोहब्बत किसी मंजिल का नाम नहीं होती, बल्कि उस सफर का नाम होती है जहां दो दिल एक दूसरे का हाथ थामे चलते चले जाते हैं। उन्हें रास्तों की परवाह नहीं होती, बस साथ होने का एहसास भर काफी होता है। ऐसे में हर राह जन्नत की तरफ जाती हुई सी लगती है। हकीकत की सरहदें खत्म हो जाती हैं और दिल की दुनिया शुरू हो जाती है, जो चली जाती है दूर कहीं चांद से पार। तो चलिए हम भी चांद के पार चलते हैं इस गीत के जरिए। फिल्म पाकीज़ा का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में आपके लिए।

0: मोहम्मद रफी के गाए फिल्म चिराग के इस गीत के साथ ही हर सिंगार यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिलहाल इस चैनल पर अब आपके लिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचनाओं को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। आईएक्स पोर्टल, माई आईआरआईएनएन पोर्टल, .in ऑक्सन पोर्टल और एक एआई संचालित हूज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come. Mr. Modi said the PM Vikasit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and the industry.
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
3: Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a coal gasification project worth over 25,000 crore rupees at Lakhanpur in Jharsuguda district of Odisha tomorrow. The Ministry of Coal informed that the project marks a historic milestone as the country's first commercial-scale coal-to-ammonium nitrate facility. President Draupadi Murmu today inaugurated AIIMS Bhubaneswar Satellite Centre and Mega Health Camp at the Subdivisional Hospital in Rai Rangpur. The initiative is expected to enhance access to quality healthcare services for people across northern Odisha. The President also dedicated several public welfare and infrastructure projects, including a mega integrated piped water supply project for mining-affected villages in Kusumi Block. The Supreme Court today ruled that the right to walk on a demarcated footpath is a fundamental right. A bench of justices P.S. Narasimha and A.S. Chandrukar held that a citizen's fundamental right to walk on a demarcated footpath is primary and shall have priority over movement by motorized vehicles. In a significant verdict, the apex court said it forms part of the right to movement guaranteed under Article 19(1)(d) and other fundamental rights including Article 21, right to life and liberty. The National Testing Agency NTA today said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination, which is scheduled for the upcoming Sunday. In a statement, the NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. Meanwhile, the NTA has also launched an official WhatsApp channel for candidates. It said that all official WhatsApp messages will be sent only from its verified number, which is +91 78 27 98 02 87. India has slammed Pakistan at the United Nations as it is accused Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. India called Pakistan a Frankenstein state that gets shocked when its owner monster bites back. The remarks were made by Anupama Singh, First Secretary at India's permanent mission to the United Nations yesterday, after Pakistan and the Organization of Islamic Cooperation raised the issue of Jammu and Kashmir during the interactive dialogue on the UN High Commissioner's annual report.
4: This is the country where the sitting defense minister boasts of hosting, training and deploying terrorist state policy, and yet Pakistan calls itself a victim of terrorism. Indeed, a paradox which only Pakistan could sustain. It is a living example of a Frankenstein state which is shocked when its own monster bites back.
3: In badminton, India's Ashmita Chaliha stormed into the women's single semi-final of the Macau Open in China today. Ashmita secured her place in the last four with a straight game victory over South Korea's Kim Min-sun in the quarterfinals. And with that, we end this news bulletin.

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
1: आकाशवाणी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्र प्रथम के मुद्दे पर। तो प्रोफेसर अंशु जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो एक 12 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रही है और इसमें राष्ट्र प्रथम की अवधारणा और खास तौर पर हम जो पॉलिसी मेकिंग या नीति निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे आप किस तरह से देखते हैं कि वैश्विक परिवेश में, परिदृश्य में किस तरह से इसे एक नई दिशा दी गई है।
2: विगत 12 वर्षों में हमने भारत की यदि विदेश नीति और आंतरिक नीति की दृष्टि से देखें तो वैश्विक राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ साथ हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा दर्शन है, जो सदियों पुराना है, उसको भी वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है और एक रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए उसका इस्तेमाल करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना के साथ हमने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े परिवर्तन किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब नीति निर्माण की हम दृष्टि से देखते हैं तो हमने भारत की यदि हम ब्रांड इमेज को देखें तो वो एक विगत 12 वर्षों में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर ये इमेज वैश्विक स्तर पर बनी है, जिसमें भारत को ग्लोबल साउथ का प्रणेता दूसरे देश मानने लगे हैं। और इसके पीछे कारण है, उदाहरण स्वरूप जब 2023 में हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, जिसे कि पश्चिम के शक्तिवान देशों का एक मंच माना जाता था, उसका एक डेमोक्रेटाइजेशन करते हुए हमने अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में G20 से जोड़ा। तो इस प्रकार से ग्लोबल साउथ की नेतृत्व की भूमिका में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारी पॉलिसी मेकिंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा जो पश्चिम के तमाम शक्तिवान देश हैं और ग्लोबल साउथ के विकासशील और अविकसित देश हैं, उनके बीच संतुलन बनाए रखने का एक पुल का काम भारत ने किया है, लेकिन इसके साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों को भी सर्वोपरि रखा है। तो जब बात आई कोविड के काले समय के दौरान हमने न सिर्फ अपने लिए 140 करोड़ हमारी आबादी के लिए हमने टीके बनाए, होम ग्रोन वैक्सीन्स बनाए, हमने दुनिया भर के देशों को, लगभग 150 देशों को हमने जीवन रक्षक दवाएं और टीके भेजे और वैश्विक स्वास्थ्य की जो कूटनीति है उसमें एक नया हमने अध्याय शुरू किया। एक रणनीतिक संतुलन हमारी नीति के माध्यम से हमने बनाए रखा। तो हमने नॉन अलाइंड की बजाय ऑल अलाइंड की नीति अपनाई, जिसमें एक ही समय में एक तरफ हम रूस के एक नेचुरल अलाय वर्षों से हैं, उस यात्रा को हम जारी रख पाए, और दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया सफल अध्याय शुरू किया। हम इसराइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, लेकिन हमारी विदेश नीति में पैलेस्टीन को भी मान्यता है। तो इस प्रकार से उधर यूक्रेन के साथ भी संवाद जारी रखा, क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी की, तो ब्रिक्स की भी हमारे पास महत्वपूर्ण मेंबरशिप है। वैश्विक सम्मान में वृद्धि हुई इस नीति की वजह से, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में 30 से अधिक देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया है। और इसी से समझ में आता है कि कूटनीतिक दृष्टि से, नीतिगत दृष्टि से भारत किस तरह से एक सफल देश के रूप में आगे बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल अंशु जी, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो विदेश नीति के मोर्चे पर भारत के पारंपरिक और नए साझेदारों के साथ संबंधों को किस तरह से प्रभावित किया गया, क्या लगता है आपको, कैसा बदलाव रहा है, ये अच्छा बदलाव रहा है या कुछ चुनौतियां भी रही हैं?
2: ये एक बड़ा और सफल बदलाव मैं मानती हूँ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब शीत युद्ध चल रहा था, जिसमें दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। तब की स्थितियों को देखते हुए भारत ने नॉन अलाइन रहने का निर्णय लिया और तब की स्थितियों के हिसाब से वो महत्वपूर्ण था, जिसमें हम न यूएसएसआर के ब्लॉक के साथ, न अमेरिका के ब्लॉक के साथ अटैच हुए, बल्कि जो विकासशील देश थे एशिया के, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, उनके साथ हमने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से भू राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, इसमें यह आवश्यक हो जाता है कि अलग अलग विषयों को लेकर जहां जिसके साथ हमारी एक साझा हमारे इंटरेस्ट्स हैं या हित हैं, वहां पर उन सकारात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाएं, हैंडशेक करें। तो भारत विगत 12 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन ये रहा कि नॉन अलाइंड से ऑल अलाइंड देश बना, और यही कारण है कि एक और रशिया के साथ हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है ही, हम नेचुरल अलाय है रशिया के दूसरी और अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया अध्याय शुरू किया जिसमें कि काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को लेकर हमने विशेष तौर पर काम शुरू किया और वहीं एक इशू बेस्ड इंगेजमेंट भी हमने कूटनीति में जोड़ा और वो क्या है तो अलग अलग जो मुद्दे हैं जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा का क्षेत्र हम देख लें, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या तकनीक की दुनिया को देख लें, कृषि का क्षेत्र देख लें, शिक्षा का क्षेत्र देख लें या सामरिक क्षेत्र देखें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के साथ हम जुड़े। हम लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विगत 12 वर्षों में पहली बार इतना करीब गए, हम अफ्रीका के देशों के पास गए। इन देशों के पास बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं लेकिन ये अविकसित देश है, तो इनके साथ भारत ने एक रोड मैप बनाया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स अलग अलग देशों के साथ शुरू की। एशिया में हमने अपने पड़ोसियों के साथ और चीन जैसे देश के साथ में रिश्तों को सामान्य करने का प्रयास किया। हालांकि चीन की तरफ से जिस तरह से हमारी सीमाओं पर लगातार चुनौतियां प्रस्तुत की तो वहां पर फिर हम चुप भी नहीं रहे। तो सबसे हमारी यदि विगत 12 वर्षों में मैं विदेश नीति की सफलता बताऊं तो वो ये है कि हम एक तरफ राष्ट्रप्रथम की भावना के साथ लेकिन विश्व बंधुत्व का दर्शन रखते हुए अलग अलग देशों के साथ अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मल्टीपोलैरिटी को, मल्टी अलाइनमेंट को, वैश्विक सुरक्षा शांति को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर चीन जैसे देश जब आकर हमारी सुरक्षा के लिए कोई खतरा उत्पन्न करते हैं या पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद को लगातार पल्लवित पोषित करता है तो फिर वहां पर भारत सक्षम, समर्थ और सशक्त रूप से जवाब भी देता है। तो इसमें चुनौतियां तो निश्चित तौर पर आती हैं जब पाकिस्तान जैसा देश हमारे सामने हो जो अपने प्रॉक्सीज को या आतंकवादी संगठनों को लगातार एक्टिव करके आगे बढ़ाते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने का काम करता हो, लेकिन दूसरी ओर द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर हमने जो साख बनाई, जो सफलता आई, जिस तरह से दूसरे देशों की सहायता की जब उन पर जरूरत पड़ी, तो फिर यहां पर इन चुनौतियों का समाधान भी हम निकाल पाने में सफल रहे हैं।
1: बिल्कुल, जाहिर है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कामयाबी भारत को हासिल हुई उसके बारे में अंशु जोशी जी बता रही थी। अब हम रुख करते हैं एमपी नथैलस साहब का। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अगर हम बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर, तो पिछले 12 सालों में हुए बदलावों को आप किस तरह से आंकते हैं और इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे?
3: जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो अभी एनवायरमेंट है, ये आप देखेंगे पहले काफी डिस्ट्रिक्ट में माओइस्ट का काफी प्रभाव पड़ा हुआ था जिसके वजह से वहां पर डेवलपमेंट बिल्कुल रुका हुआ था। लेकिन अब जो है पिछले कुछ सालों में इतना जोर दिया गया माओइस्ट को खत्म करने के लिए, और सबसे बढ़िया बात तो ये रहा कि हमारे गृह मंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया कि 31 मार्च तक 2026 में एक बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सीआरपीएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काफ़ी जोर लगाकर खासकर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जितने भी आतंकवादी थे इनके पीछे बड़े पैमाने पे ऑपरेशन लगाए और उन ऑपरेशन में कई माओवादियों को मार गिराया, और उनको मार गिराने की वजह से इनका मनोबल इतना नीचे गिर गया कि करीबन 5,000 माओवादी पिछले 2 साल के अंदर अपने आप खुद आके सरेंडर कर गए। और सबसे बढ़िया ये इसका प्रभाव रहा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम निकाला, स्कीम निकाला, जिसमें कि उनको 50,000 रुपये दिए जा रहे थे, उसके अलावा उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी और मकान दिए जा रहे थे। इनके वजह से काफ़ी तादाद में माओवादी अपना जो जंगल में रिहाइश थी वो छोड़ के बाहर आए और सरेंडर कर दिए फोर्सेस के सामने, जिसके वजह से माओवादी का बिल्कुल खात्मा हो गया है। और यहाँ इनके नेता भी जो थे वो भी कई नेता, बड़े बड़े नेता जो कि पहले बड़े कट्टर आतंकवाद थे, उन्होंने आगे आकर अपने आप आत्मसमर्पण किया और इसके वजह से माओवादी तकरीबन ख़त्म ही हो गए। अभी केवल एक ही बचा हुआ है झारखंड में जो कि पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में वो भी मारा जाएगा या वो खुद सरेंडर कर लेगा, क्योंकि अब उनको भी पता है कि अब ये चलने वाला नहीं है। उन्हीं के कई फॉलोअर्स सरेंडर कर चुके हैं और ये मिसर बेसरा के पास केवल कुछ ही आदमी बच गए होंगे जो कि सेरेंडा फॉरेस्ट के जंगलों में घूम रहे हैं, और ऑपरेशन भी कोबरा के बड़े जोरों से जारी है और कुछ दिनों में ये मारे जाएंगे या खुद सरेंडर कर देंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में करीबन 8,000 जो मिलिटेंट्स थे, इंसर्जेंट्स थे, उन्होंने खुद सरेंडर किया, जिसमें कार्बी अंगलोंग के इंसर्जेंट्स थे, बोडोस के इंसर्जेंट्स थे और आसाम के भी इंसर्जेंट थे, और उसके अलावा मणिपुर में जो यूएनएलएफ के इंसर्जेंट थे, सब ने सरेंडर किया है। और उनके सरेंडर करने के बाद काफ़ी मात्रा में वहाँ पर हथियार ख़त्म हो गए और इंसिडेंट भी ख़त्म हो गए, और उस वजह से काफ़ी वहाँ पर शांति फैलाया गया उस इलाके में, और उसके वजह से डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है, और इन डेवलपमेंट्स के वजह से लोगों को बहुत फ़ायदा चल रहा है। पहले यह डेवलपमेंट वगैरह रुके हुए थे क्योंकि आतंकवाद ने काफ़ी ज़ोरों से वहाँ पर कब्जा मार के रखा हुआ था, और इसको ख़त्म करने के बाद अब डेवलपमेंट जारी हो गई है, सड़कें बन रही हैं हर जगह, कनेक्टिविटी बढ़िया बन रहा है, और करीबन 70 से 80 एयर स्ट्रिप्स भी रिवाइव कर दिए गए हैं कई जगहों में, और जिनके वजह से अब वहाँ पर एयर फ्लाइट्स भी शुरू हो गए हैं। अब लोगों को काफ़ी सुविधा पहुँच रही है कि वो एक जगह से दूसरे जगह नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं दूसरे जगहों में भी आराम से सफर कर सकते हैं।
1: इसके अलावा आप ये भी समझना चाहेंगे कि घरेलू मोर्चे पर अपने रक्षा उत्पादों में हम किस तरह से और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर का जो बजट है वो बड़े पैमाने पर बढ़ा है, तो उत्पादन किस तरह से हो रहा है जो भारत को और मजबूती की तरफ आगे बढ़ा रहा है?
3: इसमें तो कोई शक नहीं है कि कई जो इक्विपमेंट्स है वो इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं, और आत्मनिर्भर को अपने फोकस में रखते हुए तकरीबन 38,400 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट वो अब जो है शुरू कर दिया गया है। हमारे यहाँ से हथियार बन रहे हैं और ये एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा पहले जो हम हथियार मंगा रहे थे बाहर से, उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। करीबन 5,500 डिफेंस आइटम्स जो पहले हम बाहर से मंगाते थे वो हमने मंगाना बंद कर दिया, और अपने ही देश में इन सब का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। तो इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे देश के इकोनॉमी को हो रहा है, और उस वजह से जो युवक हैं उन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में। तो इस तरीके से काफ़ी नौकरियाँ अभी लोगों को मिल रहे हैं, 15 लाख जवानों को इससे काफ़ी फायदा हो रहा है। आज ही के दिन करीबन 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, अब रुख करते हैं प्रोफेसर जोशी का। मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 12 सालों में भारत को एक रिएक्टिव नेशन के बजाय एक प्रोएक्टिव नेशन के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम उदाहरणों का जिक्र किया आपने कि एक जो ग्लोबल साउथ की एक प्रभावशाली आवाज बन रहा है भारत, साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की भी पहल भी मानवीय दृष्टिकोण से एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो इन सब चीजों का एक फायदा अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर देखें भारत को, तो वो किस तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है?
2: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में जोड़ा, क्योंकि अक्सर हम अपनी विदेश नीति की सफलता की बात करते हैं, हमने किस प्रकार के की नीतियां बनाई और किस तरह से विश्व के अलग अलग कोनों में जाकर के किस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर मित्रता के नए प्रतिमान स्थापित किए, हम इस पर तो बात करते हैं, पर इसके जो आउटकम्स हैं उसकी चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ ऐसे टेंजिबल आउटकम्स हैं जो हमने अर्जित किए। उदाहरण बताती हूँ कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने पिछले दिनों भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण एफटीए है, और इसके साथ साथ एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट भी यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ साइन किया, और ये एशिया में भारत दूसरा देश है जिसके साथ ये डिफेंस पैक्ट ईयू ने साइन किया है। अब इस एफटीए के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार से सकारात्मक टेंजिबल दृष्टि से आउटकम्स इसके निकल के आएंगे, और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन को तो बहुत उछाल मिलती हुई दिखाई पड़ती ही है। प्रोफेशनल मोबिलिटी की दृष्टि से भी हमारे पास, हम इस वक्त दुनिया की जो यूथ आबादी है, हमारे पास 22% जो यूथ पॉपुलेशन है उसका हमारे पास शेयर है। यदि हम प्रोफेशनल्स की दृष्टि से देखें तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स का और यंग फोर्स का हम देश है, वी आर अ यंग नेशन। तो यूरोप के इन देशों को इसी प्रकार के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो आप देखिए, अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा, इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा, हमारा जो बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड है ईयू के सदस्य देशों के साथ उसमें इजाफा, तो निश्चित तौर पर रेवेन्यू जनरेशन में और एफडीआईज में इजाफा, तो इससे ओवरऑल जीडीपी में बढ़ोतरी, और फिर इसके साथ साथ जो एक रोजगार की बात आती है, क्योंकि हम एक बहुत हेविली पॉपुलेटेड देश है, तो उसमें फिर हमको एक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और ऐसा हम अलग अलग, यदि आप यूएई के साथ के अपने एफटीए को और हमारी व्यापारिक डील को देखें, तो वहां पर भी प्रोफेशनल मोबिलिटी इज इन द सेंटर। आप यदि अभी हमारे साथ, हमारी मर्कोसुर के साथ जो कि लैटिन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनके साथ भी एफटीए को लेकर के बातचीत लगभग फाइनलाइज है। पश्चिम एशिया के संकट की वजह से जीसीसी के देशों के साथ भी हमारा एफटीए लगभग फाइनलाइज था, थोड़ा सा वो मुझे लगता है थमता हुआ नजर आता है वहां की स्थितियों की वजह से, पर उसमें भी प्रोफेशनल मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ। तो ये तो टेंजिबल आउटकम्स की बात हुई, मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो अब जैसे यदि मैं डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाऊं, तो पहले हम एक नेट इम्पोर्टर देश के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अपनी सफल विदेश नीति के चलते आज हम एक एक्सपोर्टर देश बनके इस एक डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में उभरे हैं, जिसमें अपने आसपास के कई ऐसे देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में विशेषकर हमारे होम ग्रोन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको देख करके और चमत्कृत थे, और भारत से उन्होंने हमारे जो होम ग्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो दूसरे इक्विपमेंट है, वो लेना शुरू किया है। बहुत सुखद समाचार है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारा जो मेक इन इंडिया का और विकसित भारत 2047 का रोड मैप है, तो कुछ इस प्रकार के आउटकम्स है। उदाहरण स्वरूप वैक्सीन मैत्री, जब हमने 150 देशों को अपने यहां के वैक्सीन भेजे, तो उस समय के ब्राजील

0: एक्सा और बेका नाम के ये लॉजिस्टिक सप्लाईज को लेकर के हुए बड़े महत्वपूर्ण समझौते हैं और अमेरिका ने अपना रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस भारत को देना शुरू किया जो कि ऐतिहासिक है। तो ये काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म्स की दृष्टि से देखें या अपने सामरिक क्षेत्र में अपर हैंड की दृष्टि से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे क्वाड का मंच हो, ब्रिक्स का मंच हो, एससीओ का मंच हो, इप्सा हो, तो I2U2 की हम बात करें तो भारत जिस प्रकार से अलग अलग अपने इनिशिएटिव्स के चलते आगे बढ़ा है तो उसमें ग्लोबल साउथ की हमने आवाज मजबूत की, एक पुल के रूप में हम पश्चिम के देशों के और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में एक साथी बन करके आए, और इसके अलावा हमने हमारे मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए विकसित भारत 2047 की यात्रा के लिए बहुत सारे माइलस्टोन्स जो है वो अकम्प्लिश किए हैं।
1: और शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में G7 की बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीएम मोदी को एक टफर निगोशिएटर कहा, क्योंकि जब तमाम बायलेटरल ट्रेड समझौतों की जब बातचीत हो रही तो भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि भारतीय निर्यातकों के साथ जो है किसी भी तरह के लिए उनके लिए नुकसानदायक ये डील नहीं होनी चाहिए और भारत का सामान मेक इन इंडिया सामान जो है बिकना वही प्राथमिकता रही है प्रधानमंत्री मोदी की।
0: बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ आपने इस बिंदु को भी चर्चा में जोड़ा, और यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में हम देख सकते हैं कि 30 से अधिक दुनिया के देशों ने सर्वोच्च उनके राजकीय सम्मान से नवाजा है। भारत की क्या साख है, भारत का क्या परचम लहरा रहा है दुनिया में, इस बात का ये प्रतीक है। और बिल्कुल टफ नेगोशिएटर है, तो मैं आपको उदाहरण दूं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की जब हम बात करते हैं तो उसमें लगातार अमेरिका की तरफ से दो बिंदुओं पर हम पर प्रेशर बनाया गया कि एक तो हम रशिया से तेल और गैस लेना बंद करें और दूसरा ये कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दें। तो चाहे आप पश्चिम एशिया के देशों या मंचों के साथ अपने FTAs को देखें, आप हाल ही में हुए EU के साथ के अपने FTA को देखें, आप दूसरे जो एक दर्जन भर के लगभग अपने FTAs हैं और अलग अलग जो सेपा है, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक हमारे जो अग्रीमेंट्स हुए हैं कई देशों के साथ में, तो हमने इस बात को जब नेगोशिएशन के लिए स्टेक होल्डर्स बैठते थे तो इस बात को हमने स्पष्ट किया था कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल सेक्टर किसी के लिए नहीं खोल सकते हैं क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सेक्टर है। हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स और इससे जुड़े हुए जो हमारे भाई बहन हैं या जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, फिशरीज से जुड़े हुए जो भाई बहन हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ लघु और मध्यम उद्योग और विशेषकर जो भारतीय कला से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे नए नए बाजार मिल सके, उनको कैसे हम प्रमोट कर सके, ये भी जब भी हमने आर्थिक और तकनीकी कूटनीति के हमने समझौते किए हैं या इसको लेकर हम आगे बढ़े तो वहां प्रधानमंत्री ने इसकी बात की है। तो आखिरकार जब अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील अनाउंस हुई तो उसमें फिर ये बात स्पष्ट होकर के आई कि इन दोनों बिंदुओं पर भारत ने किसी प्रकार का नेगोशिएशन नहीं किया। और वहीं जैसे रूस से जो तेल और गैस लेने की बात है, सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे हमें रूस से तेल और गैस मिल रहा था, तो हमको उर्सुला वॉन ने भी 2 या 3 साल पहले लगभग ये चेताया था कि हम रूस से तेल और गैस लेना बंद करें, लेकिन तब भी हमारे विदेश मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया था कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को केंद्र में रखते हुए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए वही डिसीजंस लेता है जो भारतीयों के हित में है। जब हम पर प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए गए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणाएं की तो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत के लोगों को मैं इसका नुकसान नहीं उठाने दूंगा और मेरा व्यक्तिगत इसमें नुकसान हो सकता है, मुझे कीमत चुकानी पड़ सकती, मैं इसके लिए तैयार हूं। और इसके बाद भारत ने लगातार अपने जो ये तमाम सफल विदेश नीति से मित्र बनाए हैं, तो हमने इन सबसे सहायता ली, अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया, अपने एक मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस को फिर हमने बढ़ाया, और इसके चलते देखिए हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई ऐसा इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा हम पर जब प्यूनिटिव टैरिफ्स लगे और बड़ा हल्ला मचा था कि अब क्या होगा और नुकसान होगा और अब हम क्या करेंगे, लेकिन आप देखिए कि हमने 7% से ज्यादा और फिर 8% की क्वार्टरली हमने GDP ग्रोथ रजिस्टर की थी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक ग्रोथ रही। तो ये इस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ में इस प्रकार के अलग अलग अकम्प्लिशमेंट्स के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
1: अब हम रुख करते हैं MP नथालस आपका, उनसे पूछते हैं कि सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिक्र किया कि तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रेड कॉरिडोर से ग्रीन जोन में बदलने की रणनीति अपनाई गई थी और वहां भी कामयाबी हासिल लगी, नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा संवाद और समन्वय के भी परिणाम सामने आए, तो आपसे जानना चाहेंगे जो एक और 3 बड़े ऑपरेशन हुए थे, उरी का हम जिक्र करें, बालाकोट का जिक्र करें या ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों का, तो ये 3 जो बड़े एक्शन रहे हैं इसको भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन ऑपरेशन ने किस तरह से परिभाषित किया और क्या मायने आप देखते हैं यहाँ पर जो एक एक्शन रहा?
2: इसमें सबसे बढ़िया चीज ये था कि जैसे ही वो कहीं इस तरह के वारदात कर रहे थे, जैसे कि अटैक किया उन्होंने

0: ने कॉन्वॉय सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर उरी में अटैक किया और उसके बाद जो पहलगाम में अटैक किया, हमने तुरंत उसका जवाब दिया। ये नहीं कि हम रुके रहे, सोचते रहे क्या करना है, लेकिन तुरंत अटैक करके हमने उनको साबित कर दिया कि इस तरीके के हरकत अगर आप करेंगे तो हमारा कार्रवाई एकदम जवाबदारी होगी। और इसमें खासकर जो पहलगाम अटैक हुआ था जिसके बाद ऑफ सिंदूर चला, उसमें करीबन 100 जो आतंकवाद टॉप के उन लोगों को मार गिराया और कई उनके आतंकवाद के जो बेस अक्रॉस द बॉर्डर थे वो भी खत्म कर दिए गए। हमारे एयरक्राफ्ट ने जाके वहां पर अटैक किया और उनका खात्मा किया, जिसके वजह से उनमें काफी ढीलपना आ गया, अब वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। और इसके अलावा ये भी है कि जब भी वो कोशिश करते थे पहले बॉर्डर से क्रॉस करने के लिए, काफी बार सफल हुए। मैं खुद वहां श्रीनगर में रहा हूँ, गए दिन हमारे एनकाउंटर होते रहते थे। अब जो है हालात काफी सुधर गए हैं और सुधरने की वजह से ये है कि वहां पर डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है और यहाँ तक कि डेवलपमेंट ट्रेन भी चलने लगे हैं, राइट फ्रॉम जम्मू से लेकर बारामूला तक चल रही हैं। पहले ये सब हम सोच नहीं पाते थे। और उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखें तो मिजोरम कनेक्ट हो गया रेलवे से। पहले हमें सिलचर जाना पड़ता था, सिलचर से फिर बाय रोड जाना पड़ता था। अब जो है रोड कनेक्टिविटी इतना बढ़िया हो गया थ्रू रेलवे की लोग सीधे ऐजवाल तक पहुंच सकते हैं दिल्ली से लेकर वहां तक। तो ये जो कनेक्टिविटी है इससे काफी बड़ा फायदा हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को आने जाने में काफी इसमें सुविधा पहुंची है। इसके अलावा ये है कि जब भी वहां से कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका हमारा इंटेलिजेंस जो है इतना रोबस्ट हो गया है कि हमें सब पता चल रहा है कि वहां पर अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है और उसी वक्त कार्रवाई कर दी जा रही है ताकि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इससे काफी लाभ पहुंच रहा है और आने वाले दिनों में ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट कह रही है कि कश्मीर में काफी पीसफुल सिचुएशन है, अभी अमरनाथ यात्रा भी होने वाला है, काफी तादाद में फोर्सेस पहुंच रहे हैं वहां पे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वहां पर कई जिलों में जहां आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है वो भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि इतना वहां पर शांति फैल चुका है कि AFSPA की बाद में जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
1: सर, क्योंकि आपने तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, इसलिए आपसे ये जानना जरूरी हो जाता है कि आतंकवाद और आतंकवाद को जो लोग पालते पोसते थे उस दौर में या आज से एक दशक पहले की अगर हम बात करें, 12 साल पहले की बात करें, तो उस रुख को आप किस तरह से बदला हुआ आज पाते हैं?
0: पहले ये था कि हमारे पास इंटेलिजेंस का थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अब जो है इंटेलिजेंस इतना हमारा रोबस्ट हो गया है कि जैसे ही उनका कोई कार्रवाई वो वहां से करने की कोशिश करते हैं उससे पहले ही हम उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वो हमारे जवानों पे या हमारे इलाके के अंदर आके हमला ना कर पाए।
1: इतने दिनों में भारत की एक नई डिफेंस कैपेबिलिटी भी सामने आई है, हम चाहे मेक इन इंडिया की बात करें या जिस हिसाब से डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनाए जा रहे हैं, तो ये अब इनका निर्यात भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में होने लगा है क्योंकि भारत की शक्ति पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। इस पे आप कितना ज्यादा जो है इजाफा मानते हैं कि दुनिया के देशों में निर्यात कितना ज्यादा बढ़ा है, उस मोर्चे पर कितनी सफलता मिली है?
0: ये जो ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, इसमें पाकिस्तान ने भी काफी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इनके जितने भी अटैक करने की कोशिश की गए वो सब विफल कर दिए, क्योंकि हमारे पास जो था एयर डिफेंस सिस्टम काफी रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसके वजह से उनके जितने भी अटैक्स हो रहे थे वो विफल कर दिए गए और हमें ज्यादा उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर ये हमारे पास डिफेंस सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं होता जो कि शील्ड जैसे बन गया था तो हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकता था, लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम के वजह से हम लोग उनको रोक पाए और वो नुकसान नहीं कर पाए।
1: प्रोफेसर जोशी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो भारत की उभरती हुई वैश्विक भूमिका विकसित भारत की तरफ है, इसमें आपको क्या लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को किस तरह से गति मिल रही है और आने वाले दिनों में जो एक लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनने का, उसे हम किस तरह से पूरा होते हुए देखेंगे?
2: देखिए जब हम अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देखते हैं तो हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारत की जो सफल विदेश नीति है विगत 12 वर्षों में हम जिस तरह से एक ऑल अलाइंड पॉलिसी पर चले हैं इसने कैटलिस्ट की भूमिका निभाई है। तो भारत के यदि हम आर्थिक विकास की ओर देखें तकनीकी प्रगति की ओर देखें वैश्विक सुरक्षा अपनी आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो हमारी विदेश नीति जो है इसके माध्यम से हम इनसे जुड़े हुए लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए लगातार अपने विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जब कूटनीति को हम देखते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस्ड है मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है। हम किसी एक देश की हेजेमनी की नहीं बल्कि मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे वैश्विक राजनीति में लोकतंत्र को बनाए रखना है और साथ साथ हमारे देश का विकास हो और नागरिकों के हितों को प्राथमिकता मिले। तो यदि हम अपने आर्थिक मोर्चे पर जाएं और अपनी आर्थिक कूटनीति की बात करें तो विकसित भारत 2047 को यदि हम देखते हैं तो हमारी विदेश नीति का एक बड़ा जो फोकस एरिया रहा है वो FDI रहा है। किस तरह से हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, मैंने लगातार अलग अलग FTAs का उदाहरण दिया जिनके माध्यम से इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं द्विपक्षीय स्तर पर बहुपक्षीय स्तर पर। फिर यदि हम तकनीक की दुनिया में चले तो चाहे AI की बात करें या हम डिजिटलाइजेशन की बात करें तो AI समिट का ग्लोबल साउथ का भारत पहला देश है जिसने इस बार होस्ट करते हुए एक बड़ा कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया जिसमें देश विदेश से कई राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की और AI को लेकर के जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने की बात चल रही है उसमें भी भारत एक प्रणेता की भूमिका निभा रहा है। फिर आप सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में चले क्रिटिकल मिनरल्स की दुनिया में चले तो इन सब में अपनी विदेश नीति के माध्यम से हमने जो नई मित्रताएं लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन देशों के साथ जोड़ी है आगे बढ़ाई है उसके माध्यम से हम इस लक्ष्य की पूर्ति कर पा रहे हैं क्योंकि ये विकसित भारत की यात्रा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो इसके जरिए हमारे जो भारतीय उद्योग हैं वो मजबूत होते हैं और जो हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन है उससे हम अपने उद्योगों को जोड़ते हुए एक यहाँ पर अपना एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। फिर हम ग्लोबल साउथ की आवाज प्रणेता बन के जो उभरे तो उसमें जो लगातार हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों का डेमोक्रेटाइजेशन हो और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इसमें जो ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसके नेतृत्व की बात करते हैं, इसको आज पूरी दुनिया अपना समर्थन दे रही है चाहे यूरोप के शक्तिवान देशों को आप देखें या लैटिन अमेरिका अफ्रीका और एशिया के हमारे समकक्षी देशों को देखें। तो UNSC जैसे संस्थानों में भारत लगातार भारत जैसे देशों के नेतृत्व की मांग कर रहा है और अपनी स्थायी सदस्यता के लिए तो अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर गए तो वहां स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने इस बात को फिर पुरजोर तरीके से रखा कि भारत को UNSC में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो एक वैश्विक समर्थन जो है वो आज हमें हासिल हुआ है और ये विकसित भारत 2047 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमारे लिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी नेतृत्व की भूमिका बढ़े। फिर यदि हम अपनी सुरक्षा की बात करें एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो आसपास एक फ्लक्स की सिचुएशन है, दो युद्ध चल रहे हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी लगातार तनाव बना रहता है, इन सब के बीच हमारी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार से लगातार हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे और अभी पश्चिम एशिया की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिस तरह से ईरान ने बंद किया और पूरी दुनिया ने संकट को झेला, 40% लगभग तेल गैस और LPG पूरी दुनिया को सप्लाई होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से और कुल जरूरत का 80-90% अपना तेल गैस और LPG चीन जापान साउथ कोरिया जैसे देश मंगाते हैं। हमने लगातार 27 देशों की बजाय 41 देशों से तेल गैस और LPG मंगाने का हमने पिछले 12 वर्षों में ये काम किया और अपनी जो ऊर्जा आयात हमारा जो है उसको हमने डाइवर्सिफाई किया। तो हमने अपनी इस प्रकार की डायनामिक ऊर्जा पॉलिसी के चलते ऊर्जा सुरक्षा हम बरकरार रख पाए तब जबकि दूसरे देशों में 40-60-70% तक की मूल्य वृद्धि हुई। आप देखिए कि भारत में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रही, ऑयल गैस की हमारी निर्बाध आपूर्ति लोगों को मिली। फिर मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है उस पर एक विशेष हमारा ध्यान है, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनके उभरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में और हिंद महासागर क्षेत्र में। हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से पहले सागर डॉक्ट्रिन प्रस्तुत किया जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल था। फिर जब दोबारा मॉरिशस की यात्रा की तो उन्होंने महासागर नीति रखी जो कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल है। तो तमाम हिंद महासागर के जो लिटोरल देश हैं और जो इनडायरेक्टली जुड़े हुए देश हैं वो सब आज भारत को प्रणेता मानते हुए भारत से जुड़ रहे हैं और हम इन देशों के साथ साझा विकास भी कर रहे हैं। और फिर विदेशों में जो अपने भारतीय प्रवासी हैं जो हमारे लिए हमारी GDP के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं योगदान तो करते ही है, हमारी संस्कृति के वाहक हैं, एम्बेसडर्स हैं, तो उनकी सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण को भी हमने एक प्राथमिकता दी है। तो आप देखिए, जब जब अलग अलग विश्व में हमने संकट देखे, वहां भारत ने तुरंत इवैक्यूएशन प्लान्स लॉन्च करके भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया, और जो भारतीय वहां पर रह रहे थे, उदाहरण स्वरूप रशिया यूक्रेन वॉर में, उनको तुरंत भारत वापस लाने की पहल, और सफलतापूर्वक इसका भी अकम्प्लिशमेंट हमारी विदेश नीति की वजह से हो पाया। जब हम विकसित भारत 2047 के सामरिक लक्ष्यों को देखें, आर्थिक लक्ष्यों को देखें, तकनीकी लक्ष्यों को देखें, वैश्विक मंचों पर आगे बढ़ने के लक्ष्य को देखें, तो अपनी विदेश नीति के माध्यम से हम लगातार अपने विकसित भारत के विजन को, मिशन को साकार कर पा रहे हैं।
1: आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्र प्रथम की नीति रही है भारत की, शायद वही एक वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर में जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, अपने नागरिकों की बात करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, तो ये एक नीति इसने देश के नागरिकों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना को किस तरह से और कितना मजबूत किया है, क्या मानती है?
2: ये जब हम इस नीति को देखते हैं या इस पूरे फिनोमेना को देखते हैं, तो ये हमारी विदेश नीति का एक आधार स्तंभ है, जिसमें हम राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण की बात करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो हमारी डिप्लोमेसी के एपिसेंटर में हैं, और इसके माध्यम से हम किसी के दबाव में नहीं आते, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं, और विश्व मंच पर अपने हित की तो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित रखते हैं कि देश विदेश में जो अपने लोग रह रहे हैं, भारतीय प्रवासी जो हैं, उनकी सुरक्षा और उनके विकास को हम आगे बढ़ा सके। और इसमें फिर हम देखिए एक संतुलन बना के रखते हैं, और इसके जरिए हम अलग अलग जो स्वभाव के देश हैं उनके साथ अपने पारंपरिक और नए तरीके के संबंधों को आगे ले जा रहे हैं। संकट के समय हम दूसरे देशों की तो सहायता करते हैं, लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे लोग किसी संकट में ना फंसे। तो ये हमारी नेशन फर्स्ट की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि संकट में फंसे हुए भारतीयों को हम सुरक्षित रूप से स्वदेश लेकर के आते हैं। सबसे बड़ा बिंदु, आतंकवाद पर जिस प्रकार का रुख पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनाया है, जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स टेररिज्म, तो ये अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता है। ये नेशन फर्स्ट की बात है, ये पीपल फर्स्ट की बात है, और इसमें एक बहुत ही गजब का समन्वय हमने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी रक्षा शक्ति के बीच में एस्टेब्लिश किया है, और इसके चलते, इस नेशन फर्स्ट की बात के चलते, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको हमने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी बड़ी दृढ़ता से रखा है।
1: बिल्कुल, तो अंशु जोशी जी और एमपी नाथाले साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

सुरीला सा सफर सुरीली सी डगर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मन में आपके लिए। चांद मध्यम है, आसमां चुप है, नींव की आगोश में जहां चुप है, चरागों की रोशनी भी अब सुस्ताने लगी है। हाँ, मुझे मालूम है कि आपको भी नींद आने लगी है, और नींद पर मुझे किसी का लिखा हुआ एक शेर याद आता है कि कोई किसी का होए क्यों, खुद से बिछड़े खोए क्यों, ये तौहीने इश्क हुई वो जागा, तुम सोए क्यों। तो फिलहाल सो जाइएगा, लेकिन ये गीत सुनिए क्या कह रहा है हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म ममता का ये गीत।

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में फिल्म ममता का ये गीत था। आपने सुना, हेमंत कुमार की आवाज एक अलग कशिश लिए हुए है। संगीतकार सलील चौधरी का कहना था कि यदि ईश्वर गाता तो उसकी आवाज हेमंत कुमार जैसी होती। यकीनन हेमंत कुमार की आवाज मोहब्बत को पहचान देती है। वैसे कभी कभी मोहब्बत किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। ये रिश्ता न कोई नाम मांगता है और ना ही वजह, बस एक जाने पहचाने से मुस्कान, एक शिद्दत की चाहत और दिल के किसी कोने में चुपके से उतर जाने का एहसास। ना नाम का पता, ना रिश्ते की खबर, ये अनजाना सा बंधन एक प्यारी सी आरजू है। तू अजनबी भी है और सबसे रूबरू भी है ना। न तुम हमें जानो, ना हम तुम्हें जाने। फिल्म

एक महल हो सपनों का, इस गीत के साथ ही गीत मेरे मनमीत यहीं तक। कुसुम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। फिलहाल इस चैनल पर अब आपके लिए है समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा है कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के बारे में बात की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत के इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी और सत्यापन तंत्र को मजबूत करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्विता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्विता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 59 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ

आंखों में छिपे ख्वाब अरमान और जज्बात यूं ही खामोशी से दिल तक पहुंच जाने दे कुछ रिश्ते अल्फाजों से नहीं नजरों से बनते हैं अखियों को रहने दे अखियों के आसपास बॉबी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने

0: महबूबा फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में. आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं. इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं. नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं. तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात.

वक्त हुआ है 12:24 और ठीक 37 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिकंधा मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

अभी आपने धनवान फिल्म का गाना सुना, सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया हृदयनाथ मंगेशकर ने। जी हाँ, तुम्हारी आंखें देखकर एक पल के लिए लगा जैसे वक्त ठहर गया हो और आसपास की सारी हलचल कहीं दूर खो गई हो। नजरें हटाना मुश्किल था क्योंकि उस एक झलक में न जाने कितने ख्याल और कितनी भावनाएं समा गई थीं। दिल ने जब लम्हे को चुपचाप अपने भीतर सहेज लिया, जैसे कोई अनमोल याद जो बार बार याद आने पर भी नई सी लगी।

आंखों में हमने आपके सपने सजाए हैं हर ख्वाब को प्यार और उम्मीद के रंगों से सवारा है आपकी मुस्कान आपकी बातें और आपके साथ बिताए जाने वाले अनगिनत पलों की तस्वीरें इन आंखों में बसी हुई हैं अब हर नजर किसी मंजिल को नहीं बल्कि आपको तलाशती है ऐसा लगता है जैसे इन आंखों का हर ख्वाब हर इंतजार और हर दुआ आपसे ही जुड़ी हुई हो

कुछ रिश्ते समय और परिस्थितियों की सीमाओं से परे होते हैं। वो ना उम्र के पैमानों में बंधते हैं, ना किसी औपचारिक परिभाषा में। ऐसे रिश्तों में बस अपनापन, विश्वास और एक दूसरे के लिए सच्चे भाव होते हैं। समय बीतता रहता है, मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन मन का जुड़ाव वैसा ही बना रहता है। ऐसा लगता है मानो दो आत्माओं के बीच एक अनकहा संबंध हो, जो हर दूरी और हर बंधन से ऊपर हो। प्रेम गीत फिल्म का गाना आपने सुना जगजीत सिंह की आवाज में। इसे लिखा इंदीवर ने और संगीत दिया जगजीत सिंह ने।

कभी-कभी मन में ये एहसास उभरता है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में यूं ही नहीं आते। उनकी मौजूदगी इतनी स्वाभाविक लगती है मानो वो हमेशा से हमारे जीवन का हिस्सा रहे हों। उनकी बातें, उनका साथ और उनका अपनापन दिल को एक अनकहा सुकून देता है। तब ऐसा लगता है कि जैसे किस्मत ने बड़ी नजाकत से दो रास्तों को मिलाया हो ताकि सफर थोड़ा और खूबसूरत, थोड़ा और मायने रखने वाला बन जाए। कभी कभी फिल्म का गाना आपने सुना था मुकेश की आवाज में, साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने।

अदालत फिल्म का गाना आपने सुना रफी और लता की आवाज में। गुलशन बावरा ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। जब तुम पास थे तब तुम्हारी मौजूदगी को बस एक खूबसूरत आदत समझते रहे, लेकिन दूरी ने एहसास कराया कि किसी की कमी दिल को किस तरह हर पल महसूस होती है। तुम्हारे बिना गुजरते दिनों ने सिखाया कि प्यार केवल साथ होने का नाम नहीं, बल्कि दूर रहकर भी किसी को हर पल अपने ख्यालों में बसाए रखने का नाम है। तुम्हारी यादें, तुम्हारी बातें और तुम्हारा एहसास ही वो धड़कन बन गए जो हर पल ये याद दिलाती रही कि मोहब्बत क्या होती है।

सफर फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में, इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। वक्त हुआ है 12:55 और ठीक 45 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के विषय में बातचीत की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 57 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ

अभी आपने आशिक फिल्म का गाना सुना मुकेश की आवाज में. शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने. सुहाने गीतों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो जीवन की भागदौड़ में भी एक छोटा सा ठहराव दे देते हैं. चांदनी रात हो या बस खामोश पल, ऐसे गीत हर मौसम को थोड़ा और खूबसूरत बना देते हैं.

0: एक गांव की कहानी फिल्म से आपने गाना सुना तलत की आवाज में शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया सलील चौधरी ने रात में तमाम जज्बात एक साथ उभर आते हैं दिन की हलचल और शोर में जो बातें दिल के किसी कोने में दब जाती हैं वो रात की खामोशी में धीरे-धीरे सामने आने लगती हैं कुछ मीठी यादें मुस्कान दे जाती हैं कुछ अधूरे ख्वाब आंखों को नम कर जाते हैं ऐसे में दिल कभी पुरानी बातों में खो जाता है तो कभी आने वाले कल की उम्मीदों से भर उठता है रात की तन्हाई अक्सर दिल की सबसे सच्ची आवाज सुनने का मौका देती है
1: तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए

रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म से आपने गाना सुना तलत महमूद की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। तुम तो दिल की तार छेड़कर हो गए बेखबर, मगर उन सुरों की गूंज अब तक मेरे मन में बसी हुई है। तुम शायद अपनी राह पर आगे बढ़ गए, लेकिन तुम्हारी छेड़ी हुई धुन आज भी मेरी खामोशियों में सुनाई देती है। कभी मुस्कान बनकर, कभी एक मीठी कसक बनकर, वो एहसास दिल के किसी कोने में जिंदा है।

संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 1:31 और ठीक 7 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

0: नौशेरवानी आदिल फिल्म का गाना आपने सुना लता और रफी की आवाज में परवेज शमसी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने चांद की नरम रोशनी से सजी ये सुहानी रात जैसे मोहब्बत का कोई खूबसूरत अफसाना सुनाती है तारों की चमक मानो आसमान पर प्रेम की कहानी लिख रही हो ऐसे में दिल यही दुआ करता है कि हर रात तुम्हारे लिए चांदनी की तरह उजली और हर ख्वाब मोहब्बत की मिठास से भरा हो
1: ओ कली कब तक छुपेगी एक भंवरे की निगाहों से चमक जाती है बिजली खुद ही इन गहरी घटाओं से बरस पड़ती है शबनम आप ही ठंडी फिजाओं से जा जा
2: अरे जा जा
3: जा जा

करते किसी से जीत कर भी हारने वाले कयामत की नजर रखते हैं लेकिन ताड़ने वाले जा अरे जा जा जा रे

ये केवल शिकायत नहीं बल्कि किसी को पूरी तरह समझ लेने का एहसास भी है जब किसी की बातों अदाओं और वादों के पीछे छिपे सच का पता चल जाता है तब दिल में एक अजीब सी मुस्कान और हल्की सी कसक साथ साथ जन्म लेती है आपने सुना सहरा फिल्म का गाना लता और रफी की आवाज में हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया रामलाल ने

असली नकली फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में. हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने. जब से दिल ने तेरे प्यार का तराना छेड़ा है, हर मौसम सुहाना लगने लगा है. हवाओं में एक नई खुशबू है, फिजाओं में एक नई रवानी. ऐसा लगता है जैसे जीवन की हर धड़कन किसी अनकहे गीत का हिस्सा बन गई हो, जिसके हर सुर में सिर्फ तुम्हारा नाम है.

एक दिल सौ अफसाने फिल्म का गाना आपने सुना लता और रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। मेरे हर ख्याल, हर एहसास और हर दुआ में तुम्हारी ही परछाई बसती है, सुबह की पहली किरण से लेकर रात की आखिरी खामोशी तक। तुम्हारा साथ एक मधुर धुन की तरह मेरे मन में गूंजता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन की किताब का हर पन्ना तुम्हारे नाम से रोशन हो।

या मिलन की आस। इस फिल्म का गाना आपने सुना लता और रफी की आवाज में। भरत व्यास ने इसे लिखा और संगीत दिया एस एन त्रिपाठी ने।

वक्त हुआ है 1:54 और ठीक 41 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी-बारी से समाचार समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए

जब प्यार किसी से होता है फिल्म का गाना आपने सुना रफी और लता की आवाज में हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने समय बदलता रहा मौसम आते जाते रहे लेकिन दिल के किसी कोने में बसा ये एहसास कभी नहीं बदला वर्षों की दूरी बदलते हालात और जीवन की

अनगिनत राहें भी उस स्नेह को कम नहीं कर सकी। कुछ रिश्ते समय के मोहताज नहीं होते, वो यादों, विश्वास और अपनत्व की ऐसी डोर से बंधे होते हैं जो हर दौर में अब उतनी ही मजबूत रहती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के बारे में बात की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। भारत के वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का अगला उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के जॉयल्स थॉम्सन का स्थान लेंगे। इससे पहले वे FATF में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल के वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के उपाध्यक्ष चुने जाने को भारत के लिए एक बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का समर्थन करता रहा है, ऐसे में ये नेतृत्वकारी भूमिका वैश्विक आतंकवादी फंडिंग नेटवर्क से निपटने और गैर कानूनी वित्तीय प्रणालियों को खत्म करने के प्रयासों को और मजबूत करती है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। मौसम विभाग ने

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 57 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ

डांस डांस फिल्म का गाना आपने सुना अलीशा चिनॉय की आवाज में. अनजान ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने. अपने भीतर छिपे हुए हर मधुर एहसास को सुरों में ढालकर गाए जा. जिंदगी की राह में कभी खुशियां मिले कभी उदासियां, फिर भी अपनी धड़कनों की लय को थमने मत देना. प्यार उम्मीद और मुस्कान के गीत गुनगुनाते रहना, यही मधुर तान जीवन के हर पल को खूबसूरत बनाती है और हर दिन को एक नया अर्थ दे जाती है.

लौटे खिलौने फिल्म का गाना आपने सुना यीशुदास की आवाज में। कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। माना हो तुम बेहद हंसी, लेकिन हम भी इतने बुरे नहीं कि तुम्हारी नजर हम पर ठहरे ना। हुस्न अपनी जगह बेमिसाल है, मगर दिल की सच्चाई, अपनापन और मोहब्बत का एहसास भी कम खूबसूरत नहीं होता। कभी नजरों से आगे बढ़कर दिल की आवाज भी सुनो, शायद वहां कोई ऐसी बात मिल जाए जो चेहरे की चमक से कहीं ज्यादा देर तक याद रह जाए।

0: बन गई।
1: अर्पण फिल्म का गाना आपने सुना अनवर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:37 और ठीक 18 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

बदलते रिश्ते फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मेरी सांसों को जो महका रही है, बरसों बाद भी उसका एहसास वैसा ही ताजा है जैसे किसी भीनी सी हवा का झोंका चुपके से दिल को छू गया हो। वो खुशबू यादों की हर कोने में बसी हुई है जो कभी मुस्कान बनकर होठों पर आ जाती है और कभी खामोशी में दिल को गुनगुनाने पर मजबूर कर देती है।

उत्सव फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाज में। वसंत देव ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। शायद रात की इस खामोशी में कोई मीठी याद जाग उठी है या फिर किसी अनकहे एहसास ने दिल के दरवाजे पर दस्तक दी है। बेला की भीनी भीनी खुशबू और रात का सन्नाटा मिलकर ऐसा जादू रच देते हैं कि मन अपने ही ख्यालों में खो जाता है। तब हर हवा का झोंका एक संदेश सा लगता है और हर धड़कन किसी मधुर प्रतीक्षा का गीत गुनगुनाने लगती है।

वारिस फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाज में। वर्मा मलिक ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया उत्तम जगदीश ने। वक्त हुआ है 2:57 और ठीक 36 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही फिरोज आलम के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

अर्थ फिल्म से आपने ये गजल सुनी। इसे गाया जगजीत सिंह ने और इसे लिखा राजेंद्र नाथ रहबर ने, संगीत दिया जगजीत सिंह ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो दिन की पश्चिम बंगाल यात्रा पर जाएंगे। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठित होने के बाद ये उनकी पहली यात्रा है। इस यात्रा के दौरान वे हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे, कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और स्वदेश में निर्मित तीन युद्धपोत दूनागिरी, अग्रे और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवरब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झार सुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के बारे में बात की। भारत के वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का अगला उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के जाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे जो जुलाई 2025 से इस पद पर कार्यरत हैं। श्री अग्रवाल वर्तमान में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले भी वे FATF में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं। ये फैसला 17 से 19 जून तक हुई FATF की बैठक के दौरान लिया गया। विदेश मंत्रालय ने संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल के वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के उपाध्यक्ष चुने जाने को भारत के लिए एक बड़ी जीत बताया है। लंदन के पास बेडफोर्डशायर इलाके में दो ट्रेनों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। लंदन के टाइम्स अखबार ने बताया है कि बेडफोर्ड अस्पताल के कर्मचारियों को लगभग 50 घायलों के बारे में सूचित किया गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि दोनों ट्रेनों की टक्कर में मारे गए व्यक्ति के परिवार के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 3:11 और 13 सेकंड और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हमराही का और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं यानी आपका अपना अजीज दोस्त फिरोज तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलोस आदाब और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल में गोल्डन एरा के उन चुनिंदा नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है और आप उसे बार बार सुनना चाहते हैं गुनगुनाना चाहते हैं क्योंकि आप उसे बेहद पसंद करते हैं तो ऐसे ही चुनिंदा नगमों के साथ हम हाजिर हैं गोल्डन एरा के जिसमें सबसे पहला नगमा आपके लिए हम लेकर आए हैं 1960 की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म कोहिनूर से आवाजें हैं मोहम्मद रफी साहब और लता जी की तो आइए इस बेहद खूबसूरत सफर का आगाज करते हैं शकील बदायूनी ने लिखा है इस गीत को और संगीत है नौशाद साहब का

दो सितारों का जमीन पर है मिलन आज की रात। कोहिनूर फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में और दोस्तों कहते हैं कि फिल्में हैं जो हमारे समाज का आईना होती है और फिल्में उन्हीं विषयों पर बनती है जो हमारे समाज में ज्वलंत मुद्दे होते हैं। ऐसे ही खूबसूरत मुद्दों पर, उन्हें खूबसूरत कहें या घटनाएं कहें, ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा समाज उसे जागरूक हो इन फिल्मों के ज़रिए, और यही क्लासिक दौर यानी गोल्डन एरा के फिल्मों में दिखाया जाता था। चाहे वो गांव का माहौल हो या शहर का, इन तमाम चीज़ों को बड़ी खूबसूरती से दर्शाया जाता था। ऐसी ही एक फिल्म आई थी 1959 में, धूल का फूल। धूल का फूल यश चोपड़ा साहब के निर्देशन में बनी थी और उसका निर्माण भी खुद बी आर चोपड़ा साहब ने किया था। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था माला सिन्हा ने, राजेंद्र कुमार, नंदा, अशोक कुमार, मनमोहन कृष्ण, लीला चिटनीस, मोहन छोटी, जगदीश राज वगैरह, और साथ ही साथ जड़ी ईरानी ने। इस फिल्म के गीतों को लिखा साहिर लुधियानवी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा इन दत्ता ने। इस फिल्म में 8 नगमे थे जो बेहद खूबसूरत थे। कहानी का एक हिस्सा अब्दुल रशीद की कहानी है जो एक मुस्लिम व्यक्ति है और एक अवैध हिंदू बच्चे को पालता है, उसका पालन पोषण करता है। एक जगह उनकी कहानी में क्लासिक गीत जिसे हम आपस में मिलजुल एक समुदाय दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का पैगाम देता है, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये बेहद खूबसूरत नगमा इसे फिल्म का है जो फिल्म की कहानी और संभवतः इसके पूरे संदेश का प्रतीक बन जाता है। उसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। धूल का फूल इस फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा आपके लिए मोहम्मद रफ़ी साहब, माफ़ कीजिएगा, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आपके लिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल हमराही में। और आज आपका हमराही मैं हूं आपके साथ लेकर बेहद खूबसूरत नगमों को, गोल्डन एरा के उन चुनिंदा नगमों को, उन गीतों को जो आपके दिल के बेहद करीब है। ये उस दौर के नगमे हैं जो हिंदी सिनेमा के बहुत ही खूबसूरत दौर में से हम चुन कर लाए हैं। और अब वक्त है कि हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर के एक बेहद खूबसूरत और सदाबहार गीतों को हम आपको सुनाएं। प्यार की मासूमियत, शरारत और दिल की धड़कनों को बयां करता ये गीत आज भी सुनने वालों के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए हैं। फिल्म आवारा का ये यादगार गीत, जिसके संगीतकार हैं शंकर जयकिशन साहब और इस गीत को लिखा है शैलेंद्र साहब ने, शंकर जयकिशन साहब की धुनों से सजिया ये नगमा बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है और इसे अपनी मधुर आवाजों में अमर बनाया है लता मंगेशकर जी और मुकेश साहब ने। तो आइए सुनते हैं रोमांस और नजाकत से भरपूर कालजई नगमा दम भर जो उधर मुंह फेरे। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल

जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यकीनन अब आपके लिए एक ऐसा ही गीत जिसकी धुन सुनते ही कदम थिरकने लगते हैं और चेहरे पर मुस्कान खिल उठती है। ऐसा ही एक बहुत ही प्यारा नगमा है 1957 में आई फिल्म नया दौर का, ये सदाबहार गीत जिसके गीतकार हैं साहिब लुधियानवी साहब और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है ओपी नैयर साहब ने। इस गीत को अपनी जादुई आवाजों से सजाया मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले ने। तो तैयार हो जाइए उस दौर की रंगीन फिजाओं में खो जाने के लिए और ये बेहद दिल को छू लेने वाले नया दौर के नगमे के लिए, बेहद लोकप्रिय नगमा उड़ी जब जब जुल्फे तेरी कुंवरियों के दिल मचले। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही और हमराही के इस बेहद खूबसूरत महफिल में मैं हूं आपका हमराही फिरोज और आपके लिए उन चुनिंदा नगमों के साथ हाजिर हैं गोल्डन एरा के क्लासिक दौर के सुनहरे दौर के उन खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हैं। दोस्तों कुछ गीत ऐसे होते हैं जो वक्त की सीमाओं को पार कर वक्त की सीमाओं को वक्त के बंधन को तोड़कर सीधे दिल में उतर जाते हैं और ऐसा ही एक बहुत ही मधुर और रोमांटिक गीत जो रात की खामोशी प्यार की नज़ाकत और भावनाओं की गहराई को बेहद खूबसूरती से अभिव्यक्त करता है और वो नगमा है 1956 में प्रदर्शित फिल्म चोरी चोरी का ये यादगार नगमा जिसके गीतकार शैलेंद्र साहब हैं और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है इस गीत को शंकर जयकिशन साहब की जोड़ी ने अपनी मधुर धुनों से इस गीत को अमर बना दिया। इस गीत को अपनी सुरीली आवाजों से सजाया है लता जी और मन्ना डे साहब ने। तो आइए इस प्यार और संगीत से सराबोर इस खूबसूरत रात का आनंद लीजिए इस बेहद खूबसूरत नगमे के साथ और सुनिए फिल्म चोरी चोरी का ये बहुत ही प्यारा और सदाबहार नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

अगस्त दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल सजी है आपकी अपनी हम रहेगी और हम रहेगी इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं यानी आपका दोस्त फिरोज। बात अब एक ऐसे फिल्म की जो गोल्डन एरा की बेहद खूबसूरत फिल्मों में से एक है। दोस्तों हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम युग की बात हो और फिल्मी गीतों की चंचलता मस्ती और अनोखे अंदाज का जिक्र ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। यकीनन गोल्डन एरा के जो नगमे हैं क्लासिक दौर की जो फिल्में हैं वो बेहद खूबसूरत बहुत ही प्यारी हैं। उन्हीं फिल्मों में से अब एक बहुत ही प्यारा गीत जिसमें अपने दिलकश बोल आकर्षण धुन और जोशीले अंदाज में सुनने वालों के दिलों में खास जगह बनाई। साल था 1955 का। 1955 में प्रदर्शित हुई थी राज कपूर साहब के निर्माण निर्देशन में फिल्म श्री 420। इस फिल्म में राज कपूर साहब ने बेहद खूबसूरत अभिनय भी किया था। उसी फिल्म का ये लोकप्रिय गीत जिसको लिखा है शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। इसकी यादगार धुने सीधे दिल में दस्तक देती है। गीत को अपनी शानदार आवाजों से सजाया बनाया मन्ना डे साहब और आशा जी ने। तो आइए सुनते हैं फिल्म श्री 420 का वही चुलबुला और सदाबहार नगमा मुड़ मुड़ के नदीक मुड़ मुड़ के। ये बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारा नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी आज से दो दिन की पश्चिम बंगाल यात्रा पर रहेंगे। राज्य में भाजपा सरकार गठित होने के बाद ये उनकी पहली यात्रा है। इस यात्रा के दौरान वे हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे, कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और स्वदेश में निर्मित तीन युद्धपोत दूनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झार सुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना VHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के बारे में बात की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। लंदन के पास बेडफोर्ड शायर इलाके में दो ट्रेनों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। लंदन के टाइम्स अखबार ने बताया कि बेडफोर्ड अस्पताल के कर्मचारियों को लगभग 50 घायलों के आने की आशंका के बारे में सूचित किया गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि दोनों ट्रेनों की टक्कर में मारे गए व्यक्ति के परिवार के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। दोहा डायमंड लीग में भारत के स्टार ट्रैक एंड फील्ड एथलीट और जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में चौथे स्थान पर है। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिससे वे अपने सीजन के पहले इवेंट में चौथे स्थान पर रहे। श्रीलंका के स्टार और विश्व शीर्ष खिलाड़ी रमेश थरंगा पथिरागे ने 88.68 मीटर के थ्रो के साथ खिताब जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 4:11 और 12 सेकेंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा का और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं आपका दोस्त फेरोज तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब दोस्तों हम सब की जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं बहुत सारी परेशानियां आती हैं लेकिन उन तमाम मुश्किलात उन तमाम परेशानियों से निकलकर जब आप एक अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तब वो तमाम परेशानियां और तमाम मुश्किलात बिल्कुल बहुत ही छोटी लगने लगती हैं और तभी तो कहते हैं कि जिंदगी हर दिन एक नया अवसर देती है बस उसे पहचानने की जरूरत है उसे पहचानना चाहिए मुश्किलें जीवन की परीक्षा है सजा नहीं ये हमें और मजबूत बनाती है और जो व्यक्ति जो इंसान अपने सपनों पर विश्वास करता है वही उन्हें हकीकत में बदल पाता है और यही आज हम अरुणिमा की इस महफिल में ऐसे ही मौजूदात पे बात करेंगे ऐसे ही बातों से हम इस सफर को आगे बढ़ाएंगे और कहते हैं हमारे जीवन का एक अनमोल हिस्सा होता है जो वो होता है हमारा दोस्त हमारा अपना कोई खास जो हमारे दिल में बसा होता है वो सिर्फ सुख के साथ ही नहीं बल्कि कठिन समय में हमारा सहारा भी बनते हैं एक सच्चा दोस्त एक सच्चा साथी खुशियों को बढ़ाता है और दुखों को हमेशा कम करता है जिंदगी की चुनौतियों का सामना करते वक्त ये दोस्त हमें हिम्मत मार्गदर्शन और भावनात्मक सहयोग देते हैं और शायद इसीलिए हम उसके बेहद करीब होते हैं और उस पर सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं बिल्कुल इस नगमे की तरह

मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्तनक में लुटाता रहूं। जी हाँ, अगर आपके साथ आपका साथी हो, आपका अपना हो, तो फिर आप यूं ही हंसते मुस्कुराते जीवन को आगे बढ़ाते हैं और जीवन की खुशियों को बहुत ही एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी इसी का नाम है, हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते आगे बढ़ते रहें। ये नगमा था फिल्म हमराज से, और इस गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा था रवि ने। महेंद्र कपूर साहब की आवाज में यह नगमा था फिल्म हमराज का। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, ये जिंदगी बेहद खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है, और इस प्यारी जिंदगी में हम बहुत सारे ऐसे वक्त से गुजरते हैं, बहुत सारे ऐसी मुश्किलात से भी गुजरते हैं, जहां पर ऐसा लगता है कई बार कि कोई अपना ना है, अपना कोई है ही नहीं, बल्कि बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। लेकिन इन तमाम परेशानियों के बाद कोई ना कोई शख्स ऐसा होता है, चाहे वो अपना हो या कोई पराया, लेकिन उस वक्त आपकी मदद करता है, आपका हाथ थामता है, आपको अपने कदम से कदम मिलाकर खींचते हुए आगे लेकर जाता है, तो फिर ऐसा लगता है कि वो आपकी दुनिया बन गया हो। और जब वो आपकी दुनिया बन जाता है तो उसकी हर खुशी हर गम में आप हमेशा शामिल होते हैं, उसके आसपास हमेशा उसके इर्द गिर्द रहते हैं और गाते हुए गुनगुनाते हुए बाकी बचे वक्त को बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाते हैं। इस नगमे के साथ फिल्म प्रोफेसर प्यारे लाल से हम आपके लिए लेकर आए हैं किशोर कुमार साहब और मनहर उदास की बहुत ही प्यारी आवाजों में, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी भाई ने।

गाए जा गाए जा और मुस्कुराए जा जब तक ये फुर्सत दे ये जमाना, यकीनन जब तक ये जान में जान है जब तक आप मुस्कुराते रहें हंसते रहें और जिंदगी को खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाते रहें। जिंदगी में बेहद मुश्किलात बेहद परेशानियां भले ही आए लेकिन उन सब का डटकर मुकाबला करना हम सब की जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से हम सब मुकर नहीं सकते क्योंकि इन तमाम मुश्किलात से निकल कर के इंसान एक परिपक्व और समझदार और साथ ही साथ एक बेहतर इंसान बनता है। तभी तो हम जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं खुशियों के साथ मुस्कुराते हुए और दूसरों की परेशानियों को समझते हुए। आप भी दूसरों की परेशानियों को समझते हैं मुश्किलात को समझते हैं तब आप भी एक अच्छे इंसान बनते हैं। इसी तरीके से हम सब मिलजुल कर इस जीवन को आगे बढ़ाएं खुशियों के साथ मोहब्बत के साथ। रफ़ी साहब की आवाज़ में ये अगला नगमा ऐसी ही बातें कहता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फिरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं अरुणिमा की इस दिलकश महफिल में जिसमें आप और हम मिलकर चल रहे हैं।

एक बेहद खूबसूरत सफर पर, जहां पर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक बातें, प्यार मोहब्बत की, जिंदगी की और जिंदगी को बड़ी ही खूबसूरती से आगे बढ़ाने की हो रही है। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि रास्ते धुंधले हो गए हैं, मंजिल दूर होती जा रही है और कोई हमें समझने वाला नहीं। लेकिन याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। प्यार, उम्मीद और विश्वास, ये वो तीनों ताकतें इंसान को फिर से जीना सिखाती है। आज का अगला नगमा उम्मीद की आवाज है, एक ऐसी पुकार जो दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचती है। और ये नगमा है साल 1959 में आई फिल्म नील कमल का। ये अमर नगमा महान शायर साहिर लुधियानवी के शब्दों से सजा है और संगीतकार रवि की मधुर धुनों ने ढाला है। इसे अपनी जादुई आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने। तो आइए आप भी किसी सपने, किसी अपने या खुद अपने बेहतर जिंदगी की तलाश में हैं तो इस गीत को दिल से सुनिए, क्योंकि कभी कभी एक गीत भी हमें आगे बढ़ने की नई वजह दे जाता है। आइए उसी नगमे के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल में

मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये नगमा था फिल्म नील कमल से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल सजी है अरुणिमा की, और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल में हम बातें कर रहे हैं जिंदगी से जुड़ी हुई, प्यार मोहब्बत की और मुश्किलात से बाहर निकलकर जिंदगी को आगे बढ़ाने की। दोस्तों कहते हैं कि जीवन की राह हमेशा आसान नहीं होती, कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि मंजिल दिखाई नहीं देती, रास्ते धुंधले लगते हैं और मन निराशा से भर जाता है, लेकिन ऐसे ही पलों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी हमें आगे बढ़ने की ताकत दे सकती है, और वो छोटी सी किरण एक शब्द हो सकते हैं, एक नगमा हो सकता है, एक बोल हो सकता है, या किसी का साथ हो सकता है। याद रखें, जब जीवन में कोई रास्ता नजर ना आए तब हिम्मत, विश्वास और सपनों का साथ हमारी सबसे बड़ी पूंजी बन जाते हैं। कहते हैं कि संघर्ष ही वो शिक्षा है या वो शिक्षक है जो हमें मजबूत बनाता है और हमें अपने भीतर छुपी शक्ति का एहसास दिलाता है, अपने अंदर छुपी ताकत का एहसास दिलाता है। इन्हीं भावनाओं को बेहद खूबसूरती से अभिव्यक्त करता है साल 1964 की एक फिल्म दोस्ती का ये अमर गीत, जिसको लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की जोड़ी ने, आवाज है मोहम्मद रफी साहब की, और ये नगमा जो फिल्माया गया है दो दोस्तों पे वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है, ये सीधे दिल पर दस्तक देता है।

फिल्म दोस्ती का यह नगमा था आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रफ़ी साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में, और इस फिल्म का नगमा सीधे दिल पे दस्तक देता है। ये फिल्म भी बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, अपने दौर की दो ऐसे दोस्त की कहानी जो हमेशा याद रह गई। दोस्तों, ज़िंदगी एक खूबसूरत सफ़र है, इस सफ़र में कभी खुशियों की बहार आती है तो कभी इम्तिहानों की गर्द, लेकिन जो लोग अपने दिल में मोहब्बत, उम्मीद और यकीन का चिराग रोशन रखते हैं या रोशन करते हैं, उनके रास्ते कभी तारीख नहीं होते, यानी अंधेरा नहीं होता वो रास्ता। रिश्तों की गर्माहट, अपनों का एहसास और दिलों की कुर्बत इंसान को हर मुश्किल घड़ी में हौसला देती है। मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि वो ताकत है जो टूटे हुए अरमानों को फिर से परवान या परवाज देना सिखाती है। आज का ये अगला नगमा भी कुछ ऐसा ही है, मोहब्बत और जिंदगी के इसी खूबसूरत पैगाम को अपने सुरों में समेटे हुए हैं। फिल्म अपना भी कोई होता गाए ये दिलकश नगमा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, सुरेश वाडेकर साहब और

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज से दो दिन की पश्चिम बंगाल यात्रा पर रहेंगे। राज्य में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनने के बाद ये उनकी पहली यात्रा है। इस यात्रा के दौरान वे हुगली के तारकेश्वर

0: में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे और स्वदेश में निर्मित तीन युद्धपोत दुनागिरी अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवरब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्रालय ने संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल के वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुने जाने को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त करने की नीति का समर्थन करता है, ऐसे में ये नेतृत्व भूमिका आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय प्रणालियों को खत्म करने के प्रयासों को और मजबूत करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी का उल्लेख किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि एक महत्वपूर्ण फैसले में ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। लंदन के पास बेडफोर्डशायर इलाके में 2 ट्रेनों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टामन ने हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दोहा डायमंड लीग में भारत के स्टार ट्रैक एंड फील्ड एथलीट और जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतन में 4th स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिससे वह अपने सीजन के पहले इवेंट में 4th स्थान पर रहे। वहीं श्रीलंका के स्टार और विश्व शीर्ष खिलाड़ी रोमेश थरंगा पथिरागे ने 88.68 मीटर के थ्रो के साथ खिताब जीता। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका ग्रुप डी के एक मैच में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट चरण में पहुंच गया है। कैमरून बर्गेस के आत्मघाती गोल और एलेक्स फ्रीमैन के हेडर से अमेरिका ने पहले हाफ में ही 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। 2 मैचों में 2 जीत के साथ अमेरिका नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई करने वाली मैक्सिको के बाद दूसरी टीम बन गई है। फुटबॉल विश्व कप में आज 4 मैच होने वाले हैं। ग्रुप बी के मैच में स्कॉटलैंड का मुकाबला मोरक्को से और ग्रुप सी के मैच में हैती का सामना ब्राजील से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शिवांगी। Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Paharpur village in Mayurbhanj district on the occasion of the president's 68th birthday. The two leaders will later address a massive public gathering marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led government of Odisha. During the program, they will launch development projects worth over 47,600 crore rupees at Rai Rangpur in Mayurbhanj. In West Bengal, Mr. Modi will participate in Paschim Banga Divas, West Bengal Day celebrations at Tarkeshwar in Hooghly district today. He is also scheduled to launch Dedicate to the Nation and lay the foundation stone of multiple development projects in the state. Mr. Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan. Under this installment, more than 18,880 crore rupees will be transferred directly into the bank accounts of over 9.44 crore farmers across the country. Prime Minister Modi disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, "In the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation, and uphold the highest standards of quality." He said India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation, and entrepreneurship in the years to come. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has stressed that India must optimize relationships across geographies while pursuing its national interests, strategic autonomy and multipolarity in a turbulent world. Speaking at the India-US Forum 2026 in New Delhi last evening, Dr. Jaishankar spoke about the deepening India-US partnership across domains, even as both nations navigate its issues and complexities. He added that as India rises, its interests will expand and diversify. India's senior bureaucrat Vivek Agarwal has been selected as the next vice president of the Financial Action Task Force, FATF, for the 2026-27 term. He will succeed Giles Thompson of United Kingdom, who has served in the role since July 2025. Meanwhile, in a social media post, External Affairs Ministry has termed it a major win for India. It said India continues to champion a zero-tolerance policy against terrorism. This leadership role reinforces New Delhi's relentless focus on combating global terrorist financing networks and dismantling illicit financial systems. The National Testing Agency, NTA, said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026 re-examination, scheduled for tomorrow. In a statement, the NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. Meanwhile, the NTA has also launched an official WhatsApp channel for candidates. It said that all official WhatsApp messages will be sent only from its verified number, +91 7827 980287. The Supreme Court ruled that the right to walk on a demarcated footpath is a fundamental right. A bench of justices, P.S. Narasimha and A.S. Chandurkar, held that a citizen's fundamental right to walk on a demarcated path is primary and shall have priority over movement by motorized vehicles. Peace talks between the US and Iran were called off after intense fighting between Israel and Hezbollah in southern Lebanon, killing 21 people. Iranian officials didn't travel as planned to Switzerland, insisting that the fighting in Lebanon must stop before the talks can take place. US Vice President J.D. Vance also postponed his trip. In badminton, India's Ashmita Chaliha stormed into the women's single semifinals of the Macau Open in China. Ashmita secured her place in the last four with a straight game victory over South Korea's Kim Min-sun in the quarterfinals. In the FIFA World Cup 2026, USA has entered into the knockout stage after beating Australia 2-0 in a Group D match at Seattle Stadium, Washington. The USA took a 2-0 lead in the first half. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 5:11 और 5 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का और भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं यानी आपका दोस्त फेरोज तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब और दोस्तों हम सब आज एक नई सुबह में कदम रख चुके हैं और एक नए दिन का आगाज करने जा रहे हैं क्योंकि ये नया दिन हमें हर रोज एक नई ऊर्जा नई उमंग और नई रोशनी के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है हर अंधेरी रात के बाद एक नए दिन की शुरुआत होती है और एक नया दिन जब आता है तो फिर जिंदगी में एक नई उम्मीदें भी लेकर आता है और इसी नई उम्मीद के साथ हम भी आज के इस सफर पर चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल के साथ आप भी हमारे साथ आएं इस सफर में जुड़े और अपने सफर को आसान बनाएं गाते गुनगुनाते हुए बहुत ही खूबसूरत नगमों के साथ पहला नगमा आपके लिए अय्याश फिल्म का यशुदास की बहुत ही प्यारी आवाज में ये सुबह सुहानी यकीनन ये सुबह बहुत ही सुहानी है बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि परिंदे चहचहाने लगे हैं और जग चुके हैं और हमारे आसपास का माहौल भी बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारा है इस वक्त तो आइए आज के सफर का आगाज करते हैं अय्याश फिल्म के इसी नगमे के साथ यशुदास की बहुत ही प्यारी आवाज में

यशोदास की आवाज में यह नगमा था फिल्म आयाश का, बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, जो हमें प्रेरणा देता है जिंदगी को आगे बढ़ने की, मुश्किलात से आगे निकलने की, क्योंकि हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ आती है और हर सुबह हमें एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी कभी एक सी नहीं रहती, कभी कामयाबी के फूल खिलते हैं तो कभी इम्तिहानों की धूप सफर को मुश्किल बना देती है, मगर जो लोग हौसले का दामन थामे रखते हैं वे हर मुश्किल को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना लेते हैं। जिंदगी का असली मतलब ठहर जाना नहीं बल्कि हर हाल में आगे बढ़ते रहना है, गिरना, संभलना, सीखना और फिर मुस्कुराकर अपनी जिंदगी की तरफ बढ़ना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत है। आज का अगला ये गीत यही पैगाम देता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, सफर जारी रहना चाहिए, सफर चलते रहना चाहिए, क्योंकि रुक जाना जिंदगी नहीं, चलते रहना ही जिंदगी की पहचान है। फिल्म शोर का ये प्रेरणादायक नगमा गीतकार है इंद्रजीत सिंह तुलसी की सोच और जिंदगी के फलसफे को बखूबी बयान करता है। इसे अपनी बुलंद और दिलकश आवाज से सजाया है मन्ना डे साहब और महेंद्र कपूर साहब ने। तो आइए अपने दिल में नई उमंग, नया जज्बा और नई उम्मीद जगाएं। अगर राह में मुश्किलें आए तो उनसे घबराएं नहीं, क्योंकि हर सफर का अपना एक मकसद होता है, बिल्कुल इस नगमे की तरह।